आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राज पुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-5075।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन

0: जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शिक्षा मंत्री ने विद्युत सौदाह गृह और स्टेडियम का किया शिलान्यास। 635 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ भी एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मारपीट और हत्या के मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। 2 विकास मित्रों को मिला नियोजन पत्र। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज अपने विधानसभा क्षेत्र बैकुंठपुर में आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने डुमरिया में नारायणी नदी के घाट पर विद्युत सौदाह गृह का शिलान्यास किया, तो वहीं रेवतीत गांव में आधुनिक स्टेडियम के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधा, प्रशिक्षण और मंच उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्षेत्र में उनके विधानसभा क्षेत्र के भी बच्चों को खेल के क्षेत्र में बेहतर करने की दिशा में यह स्टेडियम उनकी सहायता करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय विकास और जन सुविधाओं के विस्तार का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में शराब को भी जब्त किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने NH-27 पर ओवर ब्रिज पुल के पास छापेमारी करते हुए 635 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया। साथ ही इस मामले में जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें एक कार का चालक दीपक कुमार और दूसरा सोनू कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों गजेंद्र सिंह के पुत्र हैं और गढ़ मुकेश्वर आदर्श नगर थाना गढ़ मुकेश्वर जिला पाकुड़ के रहने वाले हैं। दूसरी गाड़ी का चालक अजय कुमार पिता नरेश कुमार जो गढ़ी सराय गोहान थाना सदर गोहान का रहने वाला है, और चौथा विशाल कुमार पिता अजीत कुमार यह भटगांव थाना सोनीपत, ये दोनों सोनीपत हरियाणा के निवासी हैं। इनकी कार को भी जब्त कर और चारों आरोपियों के पास से मिली शराब को जब्त करने के बाद इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर जादोपुर थाना की पुलिस ने भी 108 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलपुर गंडक नदी के पास छापेमारी करते हुए 108 लीटर देशी शराब को बरामद किया। इस दौरान 2 शराब तस्करों जिसमें एक बीरबल कुमार प्रसाद पिता मैनेजर मुखिया साकिन सिहोरवा थाना जादोपुर और दूसरा धर्मवीर कुमार पिता विष्णुदेव मुखिया साकिन जादोपुर शुक्ल थाना जादोपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है और आगे इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने 8 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसकी भी मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान ग्राम दुहौना पुल के पास एक मोटरसाइकिल से शराब पकड़ी। इस दौरान अभियुक्त प्रिंस कुमार पिता भीम कुमार साकिन कटिया वार्ड नंबर 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी मोटरसाइकिल शराब को जब्त कर इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहपुर बाजार में एक युवक को लोडेड पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस तथा एक बड़ी चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार निवासी मानकी राम का पुत्र मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार इस इलाके में लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से पिस्टल, मैगजीन और चाकू इत्यादि लेकर घूम रहा था। पुलिस अब इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर इस पर आर्म्स एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पास से मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त किया है और पुलिस इसके पूरे कुंडली को खंगाल रही है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने बामो गांव में आपसी विवाद को लेकर मनोज शाह पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बामो गांव में आपसी विवाद को लेकर मनोज शाह की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई थी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज चल रहा था, इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी और इलाज के दौरान मौत के बाद पुलिस ने इसमें कानूनी प्रक्रिया करते हुए हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया था और इसी मामले में पुलिस ने मानवीय साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त ग्राम केरवा थाना तरैया जिला सारण में छुपे हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने तरैया थाना क्षेत्र के केरवा गांव में छापेमारी की और वहां तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी जितेंद्र रावत पिता स्वर्गीय मोहन रावत, दूसरा बलेश्वर रावत पिता बहारन रावत और तीसरा पुंदेव रावत पिता स्वर्गीय जमुना रावत, ये सभी बामो गांव के ही रहने वाले हैं। इन्हें तरैया से गिरफ्तार कर पुलिस लाई है और आज पूछताछ के बाद इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सांसा मुसा NH 27 पर ओवर ब्रिज के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गई। इस घटना में बरौली थाना क्षेत्र के सरिया नरेंद्र गांव निवासी रंजय कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं अमरेश ठाकुर गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। दोनों युवक उत्तर प्रदेश से अपने घर लौट रहे थे और सांसा मुसा के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। घटना के बाद मृतक रंजय कुमार के परिवार जनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत महादलित विकास मिशन के तहत विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत में पल्लवी पिता रामचंद्र राम एवं पंचदेवरी प्रखंड के मगहिया पंचायत में प्रमोद कुमार पिता डोमा राम को विकास मित्र के पद पर नियोजित किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने नियोजित दोनों ही न्याय मित्रों को नियोजन पत्र देते हुए इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों पदाधिकारियों ने नव नियोजित विकास मित्रों को महादलित परिवारों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की सलाह देते हुए शुभकामना दिया और नियोजन पत्र पाकर दोनों विकास मित्र बहुत खुश हुए। युद्ध के दौरान देश में आ रहे डीजल पेट्रोल और गैस की समस्या को लेकर अब सरकार अलर्ट हो गई है। सभी विभागों के प्रशासनिक पदाधिकारी भी जनता से गैस डीजल पेट्रोल इत्यादि की खपत को नियंत्रित करने का निवेदन कर रहे हैं और स्वयं भी इसका पालन कर रहे हैं। जगह जगह नेता पदाधिकारी डीजल पेट्रोल बचाने के लिए मुहिम में जुटे हुए हैं। अब इसी मुहिम में न्यायपालिका के न्यायाधीश गणों का भी अभियान शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी से सभी न्यायाधीश गण डीजल पेट्रोल बचाने के लिए अभियान शुरू करते हुए वहां से पैदल मार्च करेंगे और पैदल ही न्यायालय में पहुंचकर न्यायिक कार्यों में अपना सहयोग करेंगे। इसके लिए सभी न्यायाधीश गणों ने तैयारी की है। कल सुबह 7 बजे हजियापुर और बंजारी ऑफिसर्स कॉलोनी से न्यायाधीश गण पैदल न्यायालय कार्य में आने वाले हैं। इधर थावे थाना की पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना गेट के पास ही वाहनों की जांच की जा रही थी, इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। वाहन से संबंधित कागजात की जाँच की गयी, जिस पर आरोपी ने सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसके चोरी के वाहन को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी दीपक कुमार है, जो लछवार के गौरी पंडित का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र गोपालगंज में पुलिस सभा का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस के विभिन्न थाना एवं शाखाओं से उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मियों की ड्यूटी, आवास, स्वास्थ्य, अवकाश, संसाधन एवं अन्य प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं जन संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इधर थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला NH 731 पर बर्फ फैक्ट्री के पास भी एक हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे की हालत में था और कार की हेडलाइट भी देर शाम को बंद थी, जिसके वजह से यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर गोमती नगर ट्रेन में मिली एक सरकटी हुई शव का पुलिस ने पता लगा लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑनर किलिंग में पिता ने ही अपने पुत्री की हत्या कर शव को ट्रेन में रख दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता बीगन अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के गाँव का रहने वाला है और पेशे से ई रिक्शा चालक है, उसकी 16 वर्षीय बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ दिनों पहले बीगन ने अपनी बेटी को किसी अपरिचित युवक से मोबाइल पर बात करते हुए देख लिया था, जिससे वह काफी नाराज था और उसने बेटी को डांट फटकार लगाने के साथ ही उसको घर से बाहर आने जाने पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बीच 17 मई को बीगन रोजाना की तुलना में समय से पहले घर पहुंच गया। जब उसने बेटी को घर में नहीं पाया तो पत्नी से पूछा। पत्नी ने बताया कि वह अपनी सहेली से मिलने गई है। इस बात से आग बबूला हुए बीगन ने उसी रात धारदार हथियार से गला रेत कर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। शव के टुकड़े किए, सिर को तालाब में फेंक दिया और धड़ को ट्रेन में एक बक्से में बंद कर लोड कर दिया। बताया जा रहा है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी पिता ने कई टुकड़े कर दिए। आरोपी ने सिर को काट कर पास के ही एक तालाब में फेंक दिया। धड़ और हाथ पैर दोनों को अलग अलग काट कर प्लास्टिक और कपड़ों में लपेट कर एक बड़े साइज के स्टील के बक्से और बैग में पैक कर दिया। इस खौफनाक साजिश में उसने पड़रौना कोतवाली की रहने वाली अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मजीबुल्लाह को भी शामिल किया। 17 मई की रात करीब 9:30 बजे तीनों ई रिक्शा से तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और शव से भरे बैग को छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस में रख दिया। इसके बाद आरोपी की बहन और बहनोई भी उसी ट्रेन में बैठ गए और लखनऊ से गोमती नगर स्टेशन पर शव को लावारिस छोड़कर वापस लौट आए। अब पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और मृतिका के सिर के टुकड़ों को बरामद करने के लिए स्थानीय तालाब में गोताखोरों के मदद से जांच पड़ताल की जा रही थी। रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त जांच में पूरी सच्चाई सामने आने के बाद अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त हरिंदर राय को गिरफ्तार किया। यह महारानी पड़ोही गांव के जलेश्वर राय के पुत्र हैं और इनके घर से ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आज पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
4: शिक्षा मंत्री ने विद्युत सौदाह गृह और स्टेडियम का किया शिलान्यास। 635 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ भी एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मारपीट और हत्या के मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। 2 विकास मित्रों को मिला नियोजन पत्र।
3: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
6: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
5: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
6: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
5: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
5: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
12: ठक ठक
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
15: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम, RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
17: आप सुन रहे हैं

0: हमारा भारत, जिसकी प्राकृतिक और भौतिक संपन्नता किसी से छिपी नहीं है, सदियों से इसे हथियाने की कोशिशें होती ही रही हैं, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने किसी को कामयाब होने नहीं दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहाने वालों में राजपूत कभी पीछे नहीं रहे। आज हम इतिहास में ऐसे ही अमर एक शूर वीर की गौरव गाथा सुनते हैं। बारहवीं सदी, भारत में मुगलों के आने से बहुत पहले चौहान वंश के राजा थे राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान, जो अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे और जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान बहादुर योद्धा, कला के पारखी, न्यायप्रिय और प्रजा के शुभचिंतक थे। उनके राजकाल में दिल्ली की खुशहाली अपनी चरम सीमा पर थी, जो एक विदेशी की नजर में खटक रही थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो दिल्ली को हथियाने के लिए हमले की तैयारी कर रहा था।
1: मेरे जाबाज सिपाहियों, हमें दिल्ली की सारी दौलत लूटकर गजनी लाना है, फिर हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाएगा। शाबाश सिपाहियों, दिल्ली अब हमारी होगी।
2: जलकार हो, हम दिल्ली जीत कर रहेंगे।
0: जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर शहाबुद्दीन गौरी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली के शेर को पछाड़ना उसके बस की बात नहीं है। गौरी की जबरदस्त हार हुई, उसे बंदी बना लिया गया, मगर उदार पृथ्वीराज चौहान ने शरणार्थी शहाबुद्दीन को मारा नहीं और ये वचन लेकर छोड़ दिया कि वो फिर कभी दिल्ली की तरफ नहीं देखेगा। उसी समय कन्नौज में राजा जयचंद का राज था। सत्ता के लोभी जयचंद ने दरबार में मन की बात रखी।
3: हम सम्राट बनना चाहते हैं।
4: महाराज, इसके लिए आपको पहले राजसूय यज्ञ करना होगा।
3: ये ठीक रहेगा। जो भी हमारी सत्ता का विरोध करेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। सभी राजाओं को सूचित किया जाए, उन्हें हमारी सत्ता स्वीकार करनी ही होगी।
4: जो आज्ञा महाराज।
0: सभी राजाओं को सूचना भेजी गई। सभी ने जयचंद की सत्ता के आगे घुटने टेक दिए, सिवाय एक के, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज नरेश का संदेश सुनकर पृथ्वीराज बहुत नाराज हुए। पृथ्वीराज के मित्र राजकवि चंद बरदाई ने स्थिति संभाली और संदेशवाहक को खाली हाथ लौटा दिया। जयचंद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा।
3: उस घमंडी की इतनी हिम्मत, वो अपने आप को क्या समझता है। सेनापति, तुरंत सेना तैयार की जाए, हम स्वयं अभी दिल्ली पे हमला करेंगे।
4: लेकिन महाराज, राजसूय यज्ञ का समय सिर पर है, अभी हमारे पास दिल्ली पर हमला करने का समय नहीं है।
3: ठीक है, यज्ञ के बाद हमारी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी करना है। पूरे देश के राजा आएंगे, तभी राजकुमारी संयोगिता अपना वर चुनेंगी। हाँ, उस अहंकारी पृथ्वीराज को स्वयंवर में ना बुलाया जाए।
4: जो है क्या महाराज।
3: उस दुस्साहसी को उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। स्वयंवर पंडाल में द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान का पुतला खड़ा किया जाए।
4: जो हुक्म महाराज।
0: मगर पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रियता और वीरता का गुणगान जयचंद की बेटी संयोगिता का दिल पहले ही जीत चुका था। उधर महल में स्वयंवर की खुशियां मनाई जा रही थी।
5: हमारी राजकुमारी कितनी भाग्यवान है ना।
6: हाँ, देश देश के शूरवीर राजा स्वयंवर में पधारेंगे, मगर भाग्यवान तो वो राजा होगा जिसके गले में हमारी सुंदर राजकुमारी संयोगिता जयमाला डालेंगी।
5: हाँ।
6: क्यों राजकुमारी जी, ठीक कहा ना मैंने।
7: हटो भी, तुम लोग हमें छेड़ो मत।
5: अरे रे रे रे, राजकुमारी तो शर्मा गई, सुंदर सुंदर गाल गुलाबी हो गए। हाय, लज्जा से नयन झुक गए। देखो देखो
7: अब बहुत हो गया, आज तुम लोग मुझसे पिटोगी।
5: तो अब हमें बताइए ना राजकुमारी, कि शूरवीर के गले में जयमाल डालेंगी आप?
6: हाय, कौन होगा वो भाग्यवान?
5: बताइए ना राजकुमारी।
6: पृथ्वीराज चौहान।
5: ये क्या कह रही है राजकुमारी? आपके पिता महाराज जयचंद तो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं।
6: इसीलिए ना कि उन्होंने हमारे पिताजी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। मगर तुम सब भी जानती हो, उनके जैसा शूरवीर दूसरा कोई नहीं है।
8: पर उन्हें तो स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया है।
6: वो अवश्य आएंगे, हमारा मन कहता है वो आएंगे।
0: गुप्तचरों ने जयचंद की योजना और राजकुमारी संयोगिता के निर्णय के बारे में पृथ्वीराज चौहान को बताया। कन्नौज की राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा पृथ्वीराज पहले ही सुन चुके थे और राजकुमारी को चाहने लगे थे। उन्होंने अपने बचपन के साथी कवि चंद बरदाई को बुलाया।
9: चंद, हमारा सम्मान दांव पे लगा है और हम राजकुमारी संयोगिता से विवाह करना चाहते हैं।
10: मगर आप ये कैसे कर सकते हैं महाराज? जयचंद आपको कन्नौज में पैर नहीं रखने देगा।
9: हमें नहीं देगा, मगर वो आप जैसे कवि कलाकार को नहीं रोकेगा।
10: मगर महाराज,
9: हमने सोच लिया है, हमारे 100 बहादुर सैनिक और हम आपके सेवक के वेश में आपके साथ जाएंगे। कन्नौज चलने की तैयारी शुरू कीजिए।
10: जो आज्ञा महाराज।
0: कन्नौज में स्वयंवर की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सभी राज्यों के शूरवीर राजा पहुंच चुके थे। जब सेवक बनकर पृथ्वीराज चौहान और चुने हुए सैनिकों के साथ कविराज चंद बरदाई कन्नौज पहुंचे, तो उन्हें खबर मिली कि पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनके पुतले को स्वयंवर पंडाल का द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया है। ये सुनकर पृथ्वीराज ने तलवार खींच ली।
11: जयचंद का इतना साहस?
10: महाराज, महाराज हमें धीरज से काम लेना होगा, हम कुछ सोचते हैं, आप धीरज रखिए।
0: चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक योजना बनाई और स्वयंवर की घड़ी का इंतजार करने लगे। क्या थी वो योजना, स्वयंवर के पंडाल में उस दिन क्या हुआ, मैं आपका दोस्त आपको बताऊंगा, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनते रहिए भारत की अमर कहानियां।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
15: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
16: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
15: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
14: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
15: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
14: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
14: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
17: सुनिए सुनिए सुनिए,
18: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
17: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
18: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
17: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
19: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
19: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
20: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
21: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
20: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
21: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
22: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
21: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
22: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
21: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
22: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
0: अभी तक आपने सुना 12वीं सदी में चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे, उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ रखा, सभी राजाओं ने अधीनता मान ली सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, बस जयचंद पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ गया, उसने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और उसका पुतला बनवाकर स्वयंवर पंडाल के द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया था। ये जानकर पृथ्वीराज चौहान भेष बदलकर कन्नौज पहुँचे और एक योजना बनाई। अब आगे स्वयंवर पंडाल में सभी राजा पहुंच चुके थे। राजकुमारी संयोगिता ने अपनी सखी सहेलियों के साथ स्वयंवर पंडाल में प्रवेश किया। महाराजा जयचंद ने राजाओं का स्वागत किया।
1: हमारी बेटी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पराक्रमी राजाओं में जिस शूरवीर के गले में राजकुमारी जयमाल डालेंगी वो भाग्यवान हमारा जामाता होगा। आओ बेटी।
0: राजकुमारी संयोगिता जिस राजा के पास से निकलती उस राजा के सेवक राजकुमारी को लुभाने के लिए राजा की गौरव गाथा सुनाते रहे और धीरे धीरे राजकुमारी पंडाल के द्वार तक पहुंच गई जहां पृथ्वीराज का पुतला था। अचानक राजकुमारी ने उस पुतले के गले में जयमाल डाल दी। तभी उस पुतले के पीछे छिपे पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को तूफान की तेजी से उड़ा ले गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। महाराज जयचंद चिल्लाए,
1: रोको रोको, पकड़ो उसे वीरों, तुम्हारी आंखों के सामने वो हमारी बेटी को ले जा रहा है। सैनिकों, हम अभी दिल्ली पर आक्रमण करेंगे।
23: क्षमा महाराज, यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं जो उनसे टक्कर लेने की हिम्मत कर सके।
1: कायर है, डरपोक है सबके साथ।
0: उधर राजकुमारी संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुँचे। सभी ने नई महारानी संयोगिता का स्वागत किया। खुशियों का दौर कई दिनों तक चलता रहा और वहाँ कन्नौज में अपमान की आग में जयचंद छटपटाता रहा। फिर एक दिन उसे आशा की एक किरण दिखाई थी और फिर दरबार में।
24: महाराज, हम सब आपकी बेचैनी समझते हैं, लेकिन अब राजकुमारी संयोगिता दिल्ली की महारानी है,
2: अब भारतवर्ष का सबसे बड़ा शूरवीर पृथ्वीराज चौहान आपका संबंधी है, चाहे आप माने या
1: नहीं। हम नहीं मानते, जब तक हम अपने अपमान का बदला ना ले लें हमें चैन नहीं आएगा। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। सेनापति, हमने सुना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज का कट्टर दुश्मन है।
23: हाँ महाराज, वो नादान बार बार आक्रमण करता है, हर बार हारता है मगर हार नहीं मानता। सुना है वो फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
1: इस बार वो नहीं हारेगा, हमारी सेना का साथ होगा तो गौरी की विजय निश्चित है। मारा जाएगा घमंडी पृथ्वीराज।
3: ये क्या कह रहे हैं महाराज, हमारी आपसी फूट का, घरेलू झगड़े का वो विदेशी लुटेरा गौरी भरपूर लाभ उठाएगा।
23: और फिर महाराज, क्षमा करें, क्या आप अपनी बेटी संयोगिता का सुहाग उजाड़ेंगे?
1: एक राजपूत का मान सम्मान सारे संबंधों से ऊपर होता है। अगर हमने राजपूत के मस्तक से अपमान का कलंक नहीं धोया तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा।
3: फिर भी महाराज, एक बार सोच लीजिए।
1: हमने सोच लिया है, हमारी बेटी संयोगिता का अपहरण करने वाले को जब तक सबक न सिखा दे हमें चैन नहीं आएगा। हमारी मित्रता का संदेश जल्द से जल्द मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पहुंचाया जाए।
3: जो आपकी आज्ञा महाराज।
0: जयचंद बदले की आग में अपना विवेक खो चुका था, उसने किसी की बात नहीं सुनी। कन्नौज की मित्रता का संदेश पाकर शातिर मोहम्मद गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
1: चलो, हमारे लिए तो ये अच्छा ही है, उनकी फूट का फायदा हम उठाएंगे। अब आएगा असली मजा, दिल्ली के शेर का शिकार करेंगे। दिल्ली के खजाने पे कब्जा करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमले की तैयारी की जाए।
0: मोहम्मद गौरी की फौज जयचंद की सेना के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़ी। मगर क्या दिल्ली इस हमले के लिए तैयार थी? वहाँ दिल्ली दरबार में जयचंद के विद्रोह और गौरी के हमले की खबर से खलबली मच गई। तुरंत जवाबी हमला किया गया। तराइन के मैदान में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी आमने सामने थे। जहाँ पिछली बार गौरी पूरी तरह हारा था, मगर इस बार गौरी का पलड़ा भारी लग रहा था।
1: पृथ्वीराज को घेर लो, आगे बढ़ाओ।
11: धोखेबाज गौरी, इस बार तो बच के नहीं जा सकता। पिछली बार जाने दिया, वो तुम्हारी भूल थी।
1: भूल? देखो, जंजीरों से बांधो, पृथ्वीराज को बंदी बना लो। शाबाश शाबाश सिपाहियों, हमने जंग जीत ली, दिल्ली पे हमारा कब्जा है। जो चाहो लूटो, छीन लो। मुबारक हो जयचंद मेरे दोस्त, हमने दिल्ली जीत ही ली।
2: बधाई हो सुल्तान गौरी, हमारा बदला पूरा हुआ, अब हम चैन से सोएंगे।
0: गौरी के सैनिकों ने दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाई। जयचंद और मोहम्मद गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कैदी पृथ्वीराज को गौरी के सामने लाया गया।
1: अब कहो पृथ्वीराज, ओ माफ करना, दिल्ली के शेर महाराज पृथ्वीराज चौहान, बेड़ियों में कैसा लग रहा है? अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए?
11: जैसा हमने आपके साथ किया था।
1: तुम्हारे यहाँ दुश्मन को माफ करने का रिवाज होगा। हम दुश्मन को खत्म करने में यकीन करते हैं।
11: तो क्या झूठा वचन देना, धोखाधड़ी करना भी तुम्हारी आदत है?
1: हाँ हाँ, ये जंग है, जंग, और जंग में सब जायज होता है। एक काम करते हैं, हम तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हैं, बशर्ते तुम हमारे गुलाम बनो।
11: तुम्हारी गुलामी, इससे अच्छा है कि हम मौत को गले लगा लें।
1: ओहो, ये तेवर? घबराओ नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हम जरूर पूरी करेंगे, मगर इतनी जल्दी क्या है हा? अभी हम गजनी जाएंगे, हमारी जनता को भी तो हमारा सबसे बड़ा शिकार देखना चाहिए, है कि नहीं?
4: तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड जरूर मिलेगा गौरी।
1: कौन देगा दंड? तुम दोगे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? तुम एक सुल्तान के गुलाम हो। आंखें नीचे।
4: एक राजपूत योद्धा की आंखें केवल अपने भगवान के सामने झुकती हैं, या फिर मरने के बाद मरने के डर से आंखें झुकाने वाले तुम जैसे होते हैं।
1: खामोश उस्ताक। सिपाही सलार, गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ डालो।
6: जी हुजूर।
1: अब दुनिया देखेगी कि दहाड़ने वाला शेर भीगी बिल्ली कैसे बनता है। मगर अफसोस, तुम अपनी मौत का तमाशा नहीं देख सकोगे, है ना महाराज जयचंद?
7: वाह मोहम्मद गौरी, बहुत अच्छे। देखिए, हमने अपना वचन निभाया, अब आपकी बारी है। गजनी लौटने से पहले हमें दिल्ली की राजगद्दी सौंप दीजिए।
1: हाँ हाँ जरूर जयचंद, आप साथ न देते तो हम पृथ्वीराज को कभी हरा नहीं पाते। आपको तो इनाम मिलना ही चाहिए।
7: धन्यवाद मोहम्मद गौरी, हमें आपसे यही आशा थी।
1: सिपाहियों, इस गद्दार को बंदी बना लो।
4: अरे ये क्या, ये सब क्या है? शाहबुद्दीन, छोड़ो छोड़ो मुझे, हम जानते नहीं कौन है हम।
1: तुम कन्नौज के राजा थे, वो कल की बात है, आज मेरे बंदी हो। जो राजा अपनी ही औलाद की खुशियों में आग लगाए, झूठे घमंड में अपने ही लोगों से दुश्मनी करे, उस गद्दार को राजा बनने का कोई हक नहीं। जो आज अपने मादरे वतन से गद्दारी कर सकता है, उसका क्या भरोसा? ले जाओ इसे, इसका सर काट के दिल्ली के चौराहे में लटका दो।
4: नहीं।
0: दिल्ली में बर्बादी का तांडव करने के बाद मोहम्मद गौरी की फौज भरपूर दौलत और बंदी पृथ्वीराज के साथ गजनी लौट गई।
1: हमारे प्यारे गजनी वासियों, ये जंजीरों में जकड़ा कैदी कोई और नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान है, जिसने पहले कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई। मगर देखो, आज वो यहाँ अकेला, मजबूर और अंधा कैदी बनकर खड़ा है।
0: उधर दिल्ली में जनता बहुत डरी हुई थी। एक गुप्तचर से जब गजनी का हाल मिला तो दिल्ली दरबार में राजगुरु जी चुप न रह सके।
8: उस कपटी जयचंद को उसकी गलतियों की सजा तो मिल गई, लेकिन वो दुष्ट गौरी हमारे महाराज पृथ्वीराज की जान भी ले सकता है।
9: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चंद बरदाई अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं गजनी जाऊंगा, और अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ही आप सब दुष्ट मोहम्मद गौरी की मृत्यु की खबर सुनेंगे।
0: इस तरह पृथ्वीराज की सहायता का प्रण करके चंद बरदाई गजनी के लिए निकल पड़े। क्या वो अपने मित्र की मदद कर पाए? मैं आपका दोस्त को बताऊंगा, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनते रहिए भारत की अमर कहानियां।
25: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
26: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
25: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
26: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
27: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
27: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
13: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
27: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
27: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
27: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
27: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
27: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
27: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
27: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
18: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
18: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
18: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
0: अब तक आपने सुना 12वीं सदी में दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर बुरी नजर रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने कई नाकाम हमले किए। उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके कट्टर दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। गौरी ने दिल्ली पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। गौरी ने गद्दार जयचंद को मार डाला। पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उन्हें गजनी ले गया। ये सुनकर चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए निकल पड़े। अब आगे चंद बरदाई को मोहम्मद गौरी का बर्ताव देखकर हैरानी हुई।
1: आओ आओ राजकवि चंद बरदाई, दोस्त का प्यार खींच लाया है। पृथ्वीराज तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। चलो हम खुद तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे जिगरी दोस्त से कराएंगे। देखो तो पृथ्वीराज,
5: तुम्हें देखने कौन आया है?
1: अरे अरे अरे अरे अरे अफसोस, मैं तो भूल ही गया, तुम अंधे हो।
17: महाराज पृथ्वीराज, मेरे मित्र
19: चंद,
17: ये क्या हो गया?
1: पृथ्वीराज, मैं तुम्हारे इस दोस्त को तभी मौत के घाट उतार देता जब इसने गजनी में कदम रखने की जुर्रत की, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था ये तुम्हें देखे और जाकर दिल्ली में बताए, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली के महान महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी मौत से कैसे बदतर बना दी है। हम चलते हैं।
17: मित्र
19: चंद, मित्र,
17: ये सब क्या हो गया?
19: मैं मरने से नहीं डरता, तुम जानते हो, पर पहले मुझे उस दुष्ट मोहम्मद गौरी की मौत चाहिए।
9: आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे पास एक योजना है महाराज, आप गौरी से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। आपकी शब्द भेदी निशानेबाजी किस दिन काम आएगी?
19: मगर चंद, ये कैसे होगा? मैं देख नहीं सकता, मुझे कैसे पता चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है?
9: वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
0: सब कुछ तय करके चंद बरदाई मोहम्मद गौरी के दरबार पहुंचे।
9: सुल्तान, जाने से पहले

0: देंगे। मैदान में पूरा गजनी जमा हो गया। बंदी पृथ्वीराज चौहान को वहां लाया गया। ऊंचे आसन पे मोहम्मद गौरी बैठा था।
1: गजनी वासियों, सुना है दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान एक हुनर जानते हैं। वो बिना देखे ही सही निशाना लगाने में उस्ताद है।
2: हाँ सुल्तान, यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी मेरे महाराज की इस कला को देखकर जीवन भर नहीं भूल पाएगा।
1: ठीक है, तारीफ बंद करो। अपने महाराज से कहो कुछ करके भी दिखाएं।
0: चंद बरदाई की गुजारिश पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज का तीर कमान मंगवाया। अब पृथ्वीराज तैयार थे।
3: बंदी, निशाना लगाओ।
1: चंद बरदाई, तुम्हारे महाराज ने कमान क्यों झुका ली?
2: सुल्तान, पृथ्वीराज आज भी दिल्ली के राजा हैं। वो किसी और का आदेश नहीं सुनेंगे। आपको ही उनसे निशाना लगाने के लिए कहना होगा।
1: इतनी अकड़! अगर निशाना नहीं लगा तो शान मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखना।
4: ये तो समय ही बताएगा।
1: देखते हैं, तीन तीर तीन निशाने। तैयार हो जाओ पृथ्वीराज, तीर चलाओ, लगाओ निशाना।
0: पृथ्वीराज के दो तीर ठीक निशाने पर लगे। ऐसी सटीक निशानेबाजी देखकर सभी हैरान थे, मोहम्मद गौरी भी।
1: तमाशा अच्छा है चंद बरदाई। अब तीसरा और आखिरी तीर चलाने से पहले तुम भी अपनी कला दिखा दो। कोई तुकबंदी ही सुना दो।
2: अवश्य। पृथ्वीराज की वीरता का सुन लो करूं बखान, जो भारतवर्ष की शान और दिल्ली की जान। अब सुनो पहेली पृथ्वी, सुनो लगाकर कान। चार बांस और 24 गज अंगुल 8 प्रमाण, उसके ऊपर है सुल्तान मच्चू को चौहान।
1: पृथ्वीराज चलाओ तीर, लगाओ निशाना।
0: कमान से तीसरा तीर सीधे ऊंचे आसन पे बैठे मोहम्मद गौरी को जा लगा। चारों तरफ हड़दड़ मच गई।
5: पकड़ो उन्हें,
6: पकड़ो।
7: हर हर महादेव, पृथ्वीराज चौहान की जय। हर हर महादेव।
4: हर हर महादेव। मेरे मित्र, मैंने बदला ले लिया।
7: पृथ्वीराज चौहान की जय।
4: चंद, ये अफगानी हमें छोड़ेंगे नहीं। शत्रु के हाथों मरने से अच्छा है हम मित्र के हाथों मरे।
2: हाँ मित्र, मैं तैयार हूँ।
4: पृथ्वीराज अमर रहे, भारत वर्ष अमर रहे।
0: हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाले वीर ने अपनी ही शर्त पर मौत को गले लगा लिया। भारतवर्ष के एक सपूत ने वीरगति पाली, जो एक नेक दिल इंसान, एक सच्चा प्रेमी, अभिन्न मित्र और एक कुशल शासक था, जिनकी प्रेम गाथा और वीर गाथा बड़े गर्व से सुनी और सुनाई जाती है। इस महान हस्ती को हमारा नमन। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम इतिहास की एक और गौरव गाथा का आनंद लेंगे, भारत की अमर कहानियां।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलर बार जैसी ढेर सारी का

0: साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहाँ इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहाँ हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया, तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

0: द्विपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
6: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिन्दुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: एडमिशन फ्री
9: कहाँ पर?
10: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
9: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
10: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
9: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
14: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
16: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
17: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
18: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
19: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
18: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
19: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
18: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
20: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
21: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
20: तो देर मत कीजिए,
21: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करें 87-894-18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97707065575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य

0: रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाए, वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद TRE4 को लेकर संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन के बाद इस संबंध में फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
2: जुलाई महीने में TRE4 की वैकेंसी आ जाएगी तो TRE4 पर स्थिति स्पष्ट होगी। विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसका पूरा एक सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को CM साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रेशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000, यदि ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा भेज।
0: बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत सभी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दूध के मूल्य में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सुधा कोल्ड की कीमत प्रति लीटर 65 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए कर दी गई है। सुधा स्टैंडर्ड दूध 57 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं गाय दूध 54 रुपए से बढ़कर 57 रुपए और टी स्पेशल 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कॉम्फेड ने पनीर, दही, घी, मक्खन और मिठाइयों की कीमतों में भी वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें 25 मई से प्रभावी होगी। साथ ही कॉम्फेड ने किसानों को प्रति लीटर दूध में 2 से 3 रुपए 13 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। खुदरा विक्रेताओं के लिए दूध के मुनाफे में 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और पाकिस्तान से आतंकी संपर्क के आरोप में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से मोहम्मद मुस्तफा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। ATS के ADG पंकज दारात ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ।
3: इन पे मुख्य रूप से यह आरोप है कि एक सज्जाद भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया में जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको अपना सोल्जर बनाना चाहता है। सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है राणा हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है, तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8

0: महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार।
1: बिहार में अपराध की बदौलत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। एडीजी विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने बताया कि अब तक 1433 अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें 428 की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तुरकोलिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पिछले महीने जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के बाद मद्य निषेध उपायुक्त दरभंगा की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित सिसवर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इधर केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नालंदा जिले के लहेरी से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.2, गया का 42.4 और बक्सर का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, पटना, गया और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के मंडल टोला में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सराफ की और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक उमेश सिंह कुशवाहा समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा की बिहार इकाई की ओर से आज से पटना में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। प्रशिक्षण महाभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षकों के अप्रैल और मई महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। सिवान के जिलाधिकारी ने 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। ये सभी जांच के क्रम में अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। आरा जंक्शन पर ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले थे। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्णा नगर स्थित एक गोदाम से 95 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर और गोदाम कर्मी को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसप्पा स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के पास अपराधियों ने एक युवक से 1,40,000 रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के कोबरधना और ठकराहा थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 5 वर्षों में 1 लाख नियुक्तियां। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर वर्ष जुलाई में आएगा विज्ञापन। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, माता पिता IAS तो आरक्षण क्यों। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेब पर बोझ, एक लीटर सुधा गोल्ड 3 रुपए और 200 ग्राम पनीर 10 रुपए महंगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 10 और आईएएस अधिकारियों का तबादला। आज अखबार लिखता है, जीविका दीदियों को इसी महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के टेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
10: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029294921 8029294921 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो, नमस्ते मैम।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
12: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, प्रयागराज से मैम।
11: जी, कैसे हैं मनोज जी?
12: ठीक है मैम
11: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है मनोज जी?
12: मैंने अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है
11: जी।
12: जी,
11: और से बताइए, घर परिवार आपका कैसा है?
12: परिवार तो सही है, जो है पापा है, पापा का दुकान रखे है और बाकी घर परिवार तो अभी सही है। आगे हम जो है कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं। बीएड के लिए, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब बीएड के लिए सोच रहे हैं।
11: बिल्कुल बढ़िया है, करिए। और अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: पापा का नाम है अनिल सिंह एंड मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
11: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
12: यस मैम
11: जी।

0: तो मनोज जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,
1: यस मैम,
0: भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कॉफी का, बी तिलहन का और सी गेहूं का। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम गेहूं।
0: प्योर है
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए मनोज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गेहूं को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तिलहन। सही उत्तर होगा तिलहन। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रवि कुमार बोल रहा हूँ। ये कुमार
0: जी कैसे हैं रवि जी?
2: ठीक हूँ मैम
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: बैठे थे।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है रवि जी आपसे? आपकी
2: 12वीं पास है।
0: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद हो गया है?
2: जारी है मैम, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन।
0: अभी लिए नहीं है?
2: नहीं।
0: ओके तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: जी
0: जी, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: मम्मी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम दिनेश।
0: जी तो ले पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी,

0: विजय, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: कौन सा ऑप्शन?
1: ऑप्शन सी तेलुगु।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी 1991। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: जी।
0: लॉक कर दो?
1: जी जी
0: जी। तो चलिए रवि जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1971 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो तीसरा प्रश्न आपसे ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, बी 86वां और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 86वां संशोधन को लॉक करते हैं। और बताएं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: अच्छा, आपका चौथा प्रश्न ये है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए
1: 32।
0: चोर है?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिजली का बल्ब सर्वप्रथम कब बना था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1879 और ऑप्शन सी 1785। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिए।
0: ऑप्शन ए 1821, बी 1879 और सी 1785।
1: 1879 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, लॉक के साथ।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1879 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875 और सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चोर
0: है
1: जी,
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 3800 संशोधन, बी 4200 संशोधन और सी 4400 संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है
1: जी,
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 4200 संशोधन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 4400 संशोधन।
1: ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 6300 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
9: हेलो,
0: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
9: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
9: नाम अनुराधा गुप्ता है, थाने से बोल रहे हैं।
0: नाम एक बार और बताइए।
9: अनुराधा गुप्ता।
0: अनुराधा गुप्ता
9: जी।
0: जी, कैसी हैं अनुराधा जी?
9: ठीक हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था अभी?
9: कुछ नहीं, खाना बना रहे थे दोपहर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
9: जी मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में अब गई हूँ।
0: अच्छा, तो आपका एम क्या है, कुछ सोचा है आपने?
9: टीचर का है, बस देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी?
9: जी
0: जी। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
9: जी
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: जी, पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।

0: सोनराजा जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिनलैंड, ऑप्शन सी
0: फिनलैंड।
1: जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है
0: तो लॉक करो।
1: जी
0: जी तो चलिए अनुराधा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी फिनलैंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है
1: जी।
0: भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921 और सी 1931। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उन्नीस सौ इक्कीस। जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है।
0: ओके चलिए तो दादा जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1921 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत है। सही उत्तर होगा 1911।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलाम जी?
2: बढ़िया है, आपने सुनाइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुलाम जी आपकी?
2: क्या मैम?
0: पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप?
2: मैट्रिक तक किए हैं मैम।
0: मैट्रिक तक किए हैं?
2: जी जी।
0: तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए आप।
2: मेरा अबू का नाम है अब्दुल वाहिद अंसारी, मम्मी का नाम है बीबी उम्मत।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी
0: जी

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम बी होगा,
0: श्रीगुप्त।
1: जी
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है लेकिन लगता है।
0: ओके तो लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा और ऑप्शन सी विज्ञान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विज्ञान होगा मैम।
0: विज्ञान होगा?
1: जी
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है लेकिन देखते हैं कोशिश है।
0: ठीक है तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जल संरक्षण। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से? जी कैसे हैं जोहाल जी? तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
7: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं क्लास में है।
0: किस क्लास में है?
7: 10 क्लास में, 10th में।
0: अभी 10th में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है?
7: अच्छी चल रही है मैम।
0: जी तो कुछ सोचा है आगे क्या करना है पढ़ाई कम्प्लीट करके?
7: नहीं मैम अभी नहीं सोचे हैं।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
7: अम्मी का नाम कैसे खाते हैं और अबू का नाम मेरा जानकारी।
0: तो जहाँ जी लिया गया आपसे आज का पहला प्रश्न।
7: यस मैम।
0: ओके

0: निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी जुजुबा मोम और ऑप्शन सी मधुमोम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी जुजुबा मोम।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
0: ये तो लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके तो चलिए झार जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी जुजुबा मोम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पैराफिन मोम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
0: ठीक है, कैसी हैं सलोनी जी?
2: ठीक हूँ
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी
0: जी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: बीए।
0: बीए चल रहा है? कौन सा ईयर?
2: फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है?
2: हाँ।
0: तो कैसे चल रही है तैयारी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: ओके।

0: नाम बता दीजिए मम्मी पापा का अपना।
1: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर नलका।
0: ओके, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है सलोनी जी, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु।
1: तमिल।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
11: जी मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं बिमल जी?
11: मैं ठीक हूँ मैम, अभी फोन दो चार बार की रिंग हो गया, कट कट गया।
0: जी मैं कॉल रिसीव कर रही थी और कॉल कट जा रही थी।
11: अच्छा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है।
0: जी जी हो सकता है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है जी बिमल जी आपकी?
11: ग्रेजुएशन है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
11: अभी तो छूट गया मैम।
0: अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
11: मम्मी का नाम प्रभावती देवी है, पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: जी तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
11: जी मैम।
0: तो चलिए आपसे आज का पहला प्रश्न ये है विमल,

0: टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लगी वेयर्ड, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय स्रोत है अब।
1: ऑप्शन ए जॉन लोगी।
0: जॉन लोगी वेयर्ड
1: जी। वेयर्ड
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, देखते हैं।
0: लॉक कर दो
1: जी।
0: जी तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जॉन लोगी वेयर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय स्रोत है अब।
1: दिल्ली।
0: दिल्ली प्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ब्राजीलिया।
1: ब्राजीलिया
0: हाँ। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना।
2: राजन कुमार बोल रहा हूँ थामे से।
0: राजन
2: जी।
0: जी क्या हाल चाल है राजन जी?
2: ठीक है
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
2: अभी हम ग्रेजुएशन पास करके बीएड कर रहे हैं।
0: जी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आया है।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी पूछिए।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मेरे मम्मी पापा का नाम है श्री रामा जी प्रसाद, मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी। तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए माइकल फराडे, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू है।
1: ऑप्शन बी होगा, थॉमस एलवा एडिसन।
0: सही श्योर है आप?
1: जी
0: लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए राजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: अच्छा आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? ऑप्शन ए मंगलयान 2, ऑप्शन बी नेपच्यून मिशन और ऑप्शन सी शुक्रयान 1। आपका समय शुरू है।
1: मंगलयान को लॉक करिए।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 50-50 है।
0: अच्छा तो लॉक करूं?
1: जी मैम लॉक कीजिए।
0: चलिए तो राजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मंगलयान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा शुक्रयान 1।
1: ओके।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97,714,86,164।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921। 80 029 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
5: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
5: मैं सोनू दुबे से बात कर रहा हूँ।
0: ठीक, कैसे हैं सोनू जी?
5: बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
5: ड्यूटी।
0: चलिए जी, आपसे आज का पहला प्रश्न।
5: जी जी
0: जी,

0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सोनू जी।
1: मम्मी का नाम कलिंदर देवी और पिताजी का नाम सोनू।
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु को फिक्स करें।
0: प्योर है?
1: प्योर नहीं हूँ, कंफ्यूज है तमिल और तेलुगु में
0: जी।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? ऑप्शन ए चेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक और ऑप्शन सी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन ए
1: जी।
0: प्योर है?
1: जी प्योर हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चेथिस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी

0: तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न आपसे ये है, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिए।
0: ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 226 और सी है अनुच्छेद 368।
1: 368 फिक्स कीजिए।
0: चोर है
1: जी,
0: लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्टेंट कॉल से।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170858657।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434, 6200042434।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894-18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: तो फिर आंखें बंद करो।
9: क्यों?
8: तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखता रहा तो आज बस।
9: तो आज क्या?
8: जो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन आज मैं उस एहसास का एहसास दिलाना चाहता हूँ तुम्हें। महसूस करोगी? तो फिर आंखें बंद करो। हवा का पहला झोंका तुम्हारे दामन को छूना चाहता है।
9: तो छूने दो ना।
8: आसमान ने अपनी बाहें फैलाई हैं, वो तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है।
9: लेने दो ना।
8: बरसात होने वाली है।
9: होने दो ना।
8: आसमान से पहली बूंद तुम्हारी तरफ आ रही है।
9: होने दो ना।
8: वो तुम्हें भिगोना चाहती है।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो

0: तरह के दर्द भी ना हो और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
11: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
12: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
11: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
13: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
11: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
11: और 90-97-61-60-02।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश करना है और ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम सुनाएं। और आप लोग कई श्रोतागढ़ हमारे कई निवेदन करने के बाद भी नए गाने के फरमाइश करते हैं लो। तो अब से हमने सोचा कि जो भी गाने के फरमाइश नए आए, यदि हम उस गाने को प्ले कर भी दें तो उसको बीच में रोका जाएगा और पुराने गाने के फरमाइश को प्ले किया जाएगा। फ़िलहाल कुछ से मैसेज हमारे पास रिसीव नहीं हुए तो अपने तरफ से गाने को प्ले करते हैं एक प्यारा सा और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी टेक्स्ट मैसेज करें और बिल्कुल हम आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फ़िलहाल पहला गाना एंजॉय करते हैं हम सभी।

रेडियो रेम झीम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुनने थे हम सभी ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे और फिर गाने मैसेज में फरमाए गए गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, मुझको दफन कर वो जब वापस जाएंगे। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले दीपक एंड जेलर जी हैं और कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ माय सॉन्ग। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और ऐसे गाने की फरमाइश नहीं करते हैं। और जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन ऐसे गाने की फरमाइश आज नहीं करना चाहिए था। खैर आपकी फरमाइश है तो हम पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हमें भी सॉन्ग सुनना है, सुना सकते हैं क्या? यदि फरमाइश आप सभी का पहुंचता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं सुनाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना है कि आप यदि एक सप्ताह में गाने सुन चुके हैं तो दूसरों को भी मौका दें ताकि दूसरा कोई भी सुन सके अपनी फरमाइश जो एक सप्ताह में नहीं सुने हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हमें भी सॉन्ग सुनना है। ओह चलिए, आपकी मैसेज हमने तो रीड कर दी है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मेरी भी एक वीक कम्प्लीट हो चुकी है तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का नेम है नाना करते प्यार है मैं कर गई, फ्रॉम द मूवी धड़कन से। और मैं पहले मैसेज इसलिए की हूँ ताकि बाद में मैसेज करने को टाइम नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ सर मेरी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, और क्योंकि मैं जा रही हूँ। चलिए, और हम लोगों को भी चाहिए, मछली बनाने जा रही हैं और कह रही हैं कि भाई लेट से थोड़े मछली लाए हैं, बिल्कुल बनाइए और हम लोग को भी पार्सल करिएगा। आगे मैसेज और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रात को सब अपनी अपनी मोहब्बत से बात करके सोते हैं, और एक हम हैं जो अपनी मोहब्बत को याद करते करते सो जाते हैं। गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ सुना दीजिएगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले पायल कुमारी भिड़िया से गाना का फरमाइश करती हैं पवन सिंह का, तो कौन से गाने सुनना है, गाने का नाम बता देती तो बेहतर रहता ताकि आपके पसंद के गाने हम सुना सकें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हीरा पाकड़ से, अखिलेश कुमार टुन टुन सॉन्ग, तो टुन टुन जी का सॉन्ग हम नहीं सुना सकते हैं, आप पुराने गाने की फरमाइश करें। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल हम दीपक एंड जेलर जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी पसंद के गाने।

रेडियो एमजी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करेंगे आप सभी तो पुराने गाने या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और अगले गाने की भी फरमाइश हम प्ले करते हैं। आगे गाने की फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और गाने का बोल देती हैं नाना करते प्यार है मैं कर गई। और आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर लेते हैं फिर उनकी गाने प्ले करते हैं। आगे मैसेज, हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि थैंक्स थैंक्स थैंक्स थैंक्स थैंक्स लव यू भैया। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपको जन्मदिन के उपलक्ष्य में और आप हमेशा मस्त रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे गाने के साथ इंजॉय किया जाए नाना करते प्यार है मैं कर गई के साथ।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
8: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
1: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
0: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल,
1: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
0: जहां हर निवाला कहे वाह।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान,
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-8947 या 9198-8869-73।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे गुलाम हुसैन की और उनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है हमको आवाज़ दे तू कहाँ है सनम। और इस गाने को डेडिकेट करते हैं, सबसे पहला नाम देते हैं मशरूम कौसर जुनेद कमरान भाई अरमान भाई नौसाद भाई जगदीप आयुष प्रिंस लक्की समीर शाकिब रुबीना ब्यूटी हिना गुड़िया साजदा गुलशन शबीना यास्मीन सलेहा आफरीन आय अरिशा और सोनो भैया आपको भी। चलिए हम भी सुनेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कुछ लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, मैं शिवांश चौधरी लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से और मुझे गाना सुनना है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हर रात एक नाम याद आता है कभी सुबह तो कभी शाम को याद आता है, सोचते हैं कर लेंगे दूसरी मोहब्बत लेकिन फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। हेलो हाय सनो भाई जी, कार्यक्रम से हम भी जुड़ गए हैं और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सर जी प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिस्टनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती ओझोलिया से और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल गुलाब को हो या चमेली, फूल गुलाब का हो या चमेली, मन में बसा लो रेडियो रिमझिम हंसते रहो अकेली। नमस्ते नमस्ते, खुद दर्द कितना भी आए हंसते रहिए, लाख परेशानियां आए हमेशा मुस्कुराते रहिए। गाना की फरमाइश करते हैं फूल तुमने भेजा था खत में फूल नहीं, सभी श्रोताओं के साथ सुनना चाहते हैं और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सावन शर्मा जी और आप बने रहे हमारे साथ, कोशिश से आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर, सर आफरो मामा मौजम से, तो बिल्कुल बढ़िया आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू जगह हो तो हमें भी एक सॉन्ग सुना देंगे फिल्म, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जगह बनता है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। धर्मवीर मूवी से रफ़ी जी की आवाज़ में गाने की फरमाइश करते हैं महबूबा, बन रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे गुलाम हुसैन के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके गाने के साथ, इंजॉय करते हैं हम सभी।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सभी और प्यारे गाने सुन रहे थे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से। और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास से पहुंचा हुआ है भिड़िया से पायल कुमारी की, और उन्होंने नए गाने के फरमाइश किए जिसके कारण की फरमाइश को हम रुक रहे हैं और अगली फरमाइश हम पूरी करते हैं। निर्मला कुमारी जादवपुर से गाने के फरमाइश करती है अखियों के झड़ोके से, तो इनके गाने हम सभी सुनेंगे। और कुछ मैसेज पहुँचे हुए देखा जाए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, लेकिन इनके तरफ से लिखा गया है कि माई बेस्ट सॉन्ग मुझको दफना कर वो वापस जाएंगे, फंटास्टिक लाजवाब दर्द भरा सॉन्ग, और बिल्कुल आपको अपने जन्मदिन पर आपके मन मर्जी का सॉन्ग सुनना चाहिए, अपने मन का सारा दर्द निकाल कर फेंक देना चाहिए, मन हल्का होगा। और मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैसेज करती हैं निशा उसका गांव प्रखंड से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि पवन सिंह का, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। पवन सिंह का ही एक गाने हमारे श्रोतागण फरमाए हुए हैं और उन्हीं के साथ आपको भी डेडिकेट करेंगे हम। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं निर्मला जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने, क्योंकि समय भी देखा जाए तो बहुत कम है।

कभी प्यारे गाने सुनने हम सभी रेडियो रेम छे 94 FM पे सचल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और समय जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में ही पहुँचा हुआ है और मैसेज करती हैं निशा घर कोनवा से और गाने के फरमाइश करती हैं उमरिया के रोग हर नजरिए से होला। और एक और हमारे श्रोता पायल, इनके तरफ से भी पवन सिंह की आवाज़ में कोई भी गाने सुनने हैं तो चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं। आप दोनों इंजॉय करें इस गाने के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।

0: आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: रेडियो MCM 94.4 FM सुनने आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और पवन सिंह की आवाज़ में गाने अभी हम सभी सुन रहे थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया कि थैंक यू सर जी, आपको धन्यवाद है रेडियो MCM सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है मैसेज में, सर हमारा तो रोग है रेडियो MCM सुनो दिल से, बिना सुने नींद ही नहीं आती। शिवांश चौधरी लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और गाने की भी फरमाइश इनके तरफ से है। और गाने का बोल देते हैं, तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता। चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपके साथ भी एंजॉय किया जाए। और देखा जाए तो यहाँ पे समय जो है 10:14 हो रहे हमारे स्टूडियो ग्रीन में, तो कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो गया है। और अंतिम गाने आप ही का रहेगा। फिलहाल आज जो भी मैसेज हमारे श्रोतागढ़ किए हुए हैं, जिनके फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सभी से क्षमा चाहेंगे। और फिर हम अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो MCM 94.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160002।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रमजम,
9: सुनो दिल से।
10: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। और साथियों, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो रिमझिम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं और यहाँ एसी भी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा है। दोस्तों, सुबह जब मैं घर से निकला तो लगा कि आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पे खड़ा है। क्या साथियों, आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। श्रोताओं, मुझे याद है पहले गर्म सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
11: अरे आरजी बाबू, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
10: ठीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये सब मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की इसमें कोई भूमिका भी है। सच बताऊं तो अब ये गर्मी मुझे डराने लगी है, ये पहले जैसी नहीं रही।
11: देखिए आचे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वो हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
10: ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं।
11: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
10: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है। और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
11: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
10: अच्छा भाभी, अब मुझे ये बताइए कि ये लू क्या होता है? हमने अक्सर सुना है लोग कहते हैं कि लू लग गई, उसको लू लग गई, इसको लू लग गई, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर होता क्या है?
11: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
10: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
11: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
10: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हम सबके लिए है, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
11: देखिए आशी, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
10: अच्छा दीदी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की तो बात की, लेकिन कई बार हमने सुना है कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और इसको कब लेना चाहिए?
11: बहुत अच्छा सवाल है आरजे। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
10: मतलब ये कि ये सिर्फ बीमारी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
11: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
10: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
11: बिल्कुल आरजे, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
10: हाँ, ये तो सही बात है। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन दीदी क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
11: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं, और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
10: ये तो ठीक है, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
11: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की भी कमी नहीं होने देते।
10: अच्छा भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, रिक्शा चलाने वाले लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा, उनका क्या?
11: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वो अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
10: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
11: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
10: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
11: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और भी अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
10: अच्छा भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं?
11: अरे आरजे, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
10: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना वो भी झेलते हैं जितना हम।
11: बिल्कुल आचे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वो किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवन दान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
10: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत जरूरी बात समझाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा, हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चा हो, या फिर कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर हो, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। साथियों याद रखिए,
8: पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी।
10: भाभी आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने कोई ऐसा मसला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
11: हाँ आरजी, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
10: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
11: हाँ आरजी, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
8: साथियों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही ये तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
11: और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं, तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
8: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और साथियों अब वो समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हम फिर मिलेंगे आप सभी से इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और याद रखिए पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहता है सुनो दिल से।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: ठक ठक।
15: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
17: कूल
14: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
17: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
18: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
18: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
18: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
19: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
20: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: तू जो है।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 40 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: आप जैसी ढेर सारी कंपनियां, साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: सीखी। इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 930।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
11: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: तो भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: धक जिया करे जाने क्या पिया करे ओ धक धक जिया करे जाने क्या पिया करे।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करे 85070-32042 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

जमाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट, दिस इज़ इट।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
4: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
3: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
4: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
3: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
5: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
3: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
3: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
7: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
3: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
8: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: तो ये नंबर आखें इकरा नीचे मत करें।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
1: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894 18744।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अरे कहो
6: रउआ तो बोली मत हमरा से। तो
5: अरे तुम हालत कल बड़ू
6: रउ, बात मत करी हमरा से, कोनो मतलब हमरा से, रउआ तो अपने धुन में रह के बा।
5: अरे बतिया का भल बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे, बताओ का भलबा।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई

0: जमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 97714861।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: कहाँ बाला?
1: घरे बानी।
0: अरे जल्दी आओ ना।
1: अरे इतना जल्दी कब आ?
0: हमरा ये सब कुछ नहीं के सुने के, जल्दी आओ ना।
1: अरे तो इतना घबराई का है बड़ी?
0: हमरा जिंदगी और मौत के सवाल बा, प्लीज जल्दी आ जाना।

0: रखे परी छल।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

0: का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: अपना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई

0: डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, हमको गाना सुनना है।
2: जी बिल्कुल सुनवाएंगे, गाना बता दीजिए नाम गाने का।
1: अगला शुक्रवार को मैं फोन किया था उस गाने के लिए, लेकिन कहाँ बजाए आप लोग गाना?
2: आप सुनते हैं रेडियो रिमझिम को?
1: एकदम दिन भर सुनते हैं।
2: तो फिर आप अपना गाना जरूर सुने होंगे।
1: नहीं बजा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बज जाएगा। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कब सुनाइए?
2: ये आज या कल में शाम को 5 से 7 के बीच में चल जाएगा और रिपीट 9 से 11 के बीच में चलता है। सुबह 9 से 11 के बीच में, अगर आज वाला कल चलेगा, कल वाला परसों चलेगा।
1: ठीक है, गाना हमको सुना दीजिए क्रांति का।
2: क्रांति का कौन सा गाना?
1: कोई गाना क्रांति का सुना दीजिए।
2: क्रांति से कोई भी गाना? और गाना सुनवाना भी है?
1: सुनवाना है आपको और रिमझिम के सारे श्रोतागण को।
2: ओके, तो प्ले करे गाना आपकी?
1: हाँ, कर दीजिए
2: जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो झिमझिम 90.4 FM में।
1: आप गाना सुनाइए मेरे को।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से है।
1: मैं दीपाली पांडे गोपालगंज से हूँ।
0: जी कैसी है दीपाली?
1: अभी हूँ।
0: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: मेरे को अभी हिंदी गाना चल सका हो?
0: अभी नहीं चलेगा, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी अगर रिकॉर्ड कराइएगा तो शाम को 5 से 7 के बीच में आपका गाना आ जाएगा।
1: अच्छा तो करा दीजिए।
0: जी बिल्कुल बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है हिंदी। जी बिल्कुल सोच के बताइए।
1: ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम।
0: जी और गाना सुनवाना भी है?
1: हाँ जितने रेडियो रिमझिम पे गए हो उनको सुना दीजिए।
0: जी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: ठीक है।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: तो मैम, अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
2: क्या हाल चाल है अनिल जी?
1: आज ठीक नहीं है हाल।
2: क्या है?
1: अरे इतना धूप में अभी काम कर रहे हैं, आज छुट्टी लिए हुए हैं।
2: अच्छा, तो घर पे हैं आज?
1: आज घर पे हैं।
2: गेहूँ काटने गए हैं क्या?
1: नहीं, कटाया गया है, तो आदमी रख के कटाया है, लेकिन सारा मतलब ट्रैक्टर लगा के इकट्ठा कर रहे हैं।
2: अच्छा, दौरी कर देना है आज, पूरा फाइनल है। तब क्या दिक्कत है, तब खटिया आज पूरा दिन तो खेत में।
1: हाँ वही तो, लेकिन हम रिपीट वाला सुन रहे थे, उसके बाद इनका सोनू सर वाला आता है वो सुन रहे थे, रातों भी सुने थे, लेकिन थोड़ा रात में नींद आ जाता है ना, काम ज्यादा करने के बाद सुनने से क्या होता है, जल्दी नींद आता है।
2: सुनते सुनते कब नींद आ गया, कौन से गाने पे सो गया, कोई पता नहीं रहता है।
1: परसों बजा था मेरा, मैं सुना ही नहीं था, कल सुना दिन में।
2: अच्छा, चलिए कोई नहीं, खेत भी जरूरी है क्योंकि बरखा बरस जाएगा कोई नहीं जानता, फिर सब बिगड़ जाएगा।
1: आज गाना सुनना है ना, हमारी मम्मी की फरमाइश है, उसी पर सुनना है।
2: जी जी बिल्कुल, बताइए।
1: तो आपसे बात करना है उनको, कर लीजिए थोड़ा सा बात उनसे, वही बताएंगे कौन सा गाना सुनना है।
2: जी बिल्कुल करवाइए।
3: हेलो,
2: नमस्ते आंटी जी। जी क्या समाचार बार? और
3: ठीक बाय, अपन बताइए।
2: हमारे बढ़िया बात, संगे संगे खेते में बानी अभी। चलिए बढ़िया बात, खाना पीना भइल बा कि ना? अभी
3: खाना पीना हो गल बा।
2: हो गल बा,
3: गाना का फरमाइश बा।
2: जी बिल्कुल बताई, कौन गाना सुने के बा?
3: लाखों में एक पौल बानी हम बहू रानी।
2: अच्छा, तो बहू रानी सुन के गाना खुश हो जाए एकदम।
3: हाँ,
2: सुनवाओ के बा गाना? गानों के बा बहू रानी के
3: बाजी तो सब लोग सुनते बहू रानी।
2: चली लाखों में एक तो पहले ही बानी।
3: लाखों में एक तो पहले ही बानी।
2: चली ठीक बा, तो प्ले करता नी गाना।
3: ठीक बा,
2: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: ठीक है
1: जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: बालवीर सुंदर हूँ
1: जी। कैसे हैं बालवीर जी?
0: ठीक है, अपन बताइए।
1: बढ़िया हूँ।
0: गाना सुनना है जो तारे गर्मी छूटा था पसीना, जय जय कोको कोला।
1: अच्छा, कोको कोला वाला गाना सुनना है।
0: जी जी
1: जी। और सुनवाना भी है गाना?
0: जी, अमन शीश रे बबलू अमर जी थे सुंदरी के रहने वाला कपड़ा दुकान।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपके।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किए।
2: अरे टीका हो
3: रुआ तो बोली मत हमरा से। तो
2: अरे तमो कालत कल बड़ू
3: रो, बात मत करी हमरा से। कोनो मतलब हमरा से रुआ तो अपने धुन में रह के बाहम।
2: अरे बतिया का भल में बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे, बताओ का भल।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Now pick it up, now pick your phone up. Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: The phone ding ding, bajti hai to kehte hain hello.
14: Hello, hello, hello, hello, hello.
15: Baage baage firte hain.
16: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
18: नमस्ते।
17: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
18: मैं निशा सुकुमार से।
17: जी, कैसी हैं निशा जी?
18: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
17: मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
18: मैं तेरी बन जाऊंगी।
17: मैं तेरी बन जाऊंगी
18: जी,
17: और सुनवाना भी है
18: जी आपको और जितने।
17: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपकी
18: जी। थैंक यू,
17: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में कॉल की।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमटिम नब्बे.4 एफएम में। जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: ऋतिक कुमार देवापुर
0: जी। कैसे हैं ऋतिक जी?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था?
1: कुछ भी नहीं दीदी, सुन।
0: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: इमाम डोल जाएंगे, हिंदी गाना।
0: इमाम डोल जाएंगे और सुनवाना भी है गाना?
1: आपको
0: ओके प्ले करे गाना आपकी। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Bhage bhage phirte hai.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
12: नमस्ते मैडम।
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: मैं रामनरेश बाजार से बात कर रहा हूँ
15: जी। कैसे हैं रामनरेश जी?
12: बढ़िया, आप अपना सुनाइए।
15: हम भी बढ़िया हैं।
12: मैडम मैं तो गाना सुनना था
15: जी। बिल्कुल, गाना सुनवाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
12: गाना सुनवा दीजिए, तड़ी पार का कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
15: तड़ी पार का कोई भी गाना
12: जी?
15: जी, और सुनवाना भी है गाना
12: जी। थाने से रामा जी हैं, अरंदर जी, देवेंद्र जी, चटला जी और जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं के साथ सुनना चाहता हूँ।
15: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
12: जी। बहुत बहुत धन्यवाद
15: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल सुनवाएंगे गाना, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ मुंबई से, मुझे गाना सुनना है तेरे नैनो मेरे नैनो।
1: एक बार और बताइए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है।
0: तेरे नैनो मेरे नैनो,
1: मीठी बातें करती है वही वाला।
0: जी
1: और सुनवाना भी है।
0: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशर, जुनेद, समीर भाई, अमन भाई, प्रदीप भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई और रुबीना जी, यूपी जी, हिना जी, गुड़िया, दलजा जी, सभी को सुनवाना चाहता
1: हूँ। ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपके।
0: जी मैम, थैंक यू,
1: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लमाई चॉइस में कॉल किया।
2: तेरे नैना
3: मेरे नैना,

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
17: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
16: Bhage bhage phirte hain.
18: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम सलाम।
19: खैरियत?
15: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
19: हम भी ठीक है सर
15: जी। नाम बता दीजिए अपना।
19: मेरा नाम है मनोजी नाम डुमरिया से। एक बार लगा तो नहीं उठाया।
15: अच्छा अभी रिसीव कर लिया है ना? अभी तो रिसीव किया है ना?
19: हाँ अभी तो किया है
15: जी। तो जी बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है?
19: जल्दी लगता नहीं है तुम्हार बूझ हो हार गए नहीं लग आज मैंने लग गया।
15: चलिए तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
19: वो गाना सुना दीजिए, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे।
15: और सुनवाना भी है?
19: हाँ सुनवाना है, पहले तो आपको और दूसरा कपरपुरा वाले मनन भाई को
15: जी।
19: और उसके बाद रिमझिम जितना सुनने वाले मेरे भाई हैं सबके लिए।
15: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
19: हाँ
15: जी
19: सुन सकते हैं
15: ये शाम को 5 से 7 के बीच में।
19: ठीक है
15: जी, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई चौधरी कॉल के।

0: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी क्या चल है?
0: बहुत बढ़िया है आपका। मैं
1: जी मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
0: अभी तो काम पे बैठे हुए हैं, सोचे कि आपको कॉल लगा दे। बहुत मुश्किल से आज आपका कॉल लगा हुआ है।
1: जी जी।
0: और हम सोचे कि आज अपना एक गाना आपको बताए जो पसंद है।
1: बिल्कुल बताइए।
0: जैसे कि हमको गाना पसंद है, मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुलसी दीदा अपनी बाहों से होने न दूंगा।
1: जी, और सुनवाना भी है गाना?
0: हाँ हाँ सुनवाना है।
1: जी
0: ठीक है, सुना दीजिए।
1: तो प्ले करे गाना?
0: जी जी प्ले कीजिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चॉइस में कॉल।
2: मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या? मुरारी लाल विजय कुमार,
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: नमस्ते। मैं
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जी मैं दानापुर से विनोद बोल रहा हूँ।
15: ठीक, कैसे हैं विनोद जी?
14: अच्छे हैं जी।
15: ठीक, क्या हो रहा था अभी?
14: बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
15: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
14: के नाम है अवतार, गाने का बोल है प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, ये वाला गाना सुनवा दीजिएगा।
15: और सुनवाना भी है?
14: जी जी, 5-7 लड़के हम लोग बैठे हैं, बच्चे लोग हैं, मिल के साथ में सुनेंगे।
15: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आपके।
14: जी जी
15: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मैं चॉइस में कॉल किया।
14: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
0: हमें नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं? मैं
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल झकास।
1: लेकिन
0: बैठे हैं फुलवारी में, हवा उखा रहे हैं, वह सब बने बनाया हुआ है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, हमारा पेड़ के नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा हवा ले रहे हैं।
1: जी जी,
0: छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन छोड़ रहे हैं पेड़ पौधे के साथ।
1: अच्छा अच्छा, लाल बहादुर बात कर रहे हैं ना आप?
0: जी जी
1: जी।
0: आप सोनी मैन?
1: जी सोनी ही बात कर रहे हैं।
0: गोल्ड सोना।
1: गोल्ड सोना, तो गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
0: आज गाना सुना दीजिए, बरसात फिल्म का। बरसात फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल, कौन सा गाना? बरसात फिल्म से
0: गाना नहीं है, बिछुआ। यही,
1: और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है, हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं ग्रामीण से, पंचायती राज से, उनको और हमारे इंजीनियर साहब, इनके पश्चात इन बाबू पिछला दुहाई और बहना दुहाई। और आपको जानता है, सुन रहा है कि आज बारिश वरिश हो रहा है, उसमें बिछुआ निकल रहे हैं, तो लोग थोड़ा सावधानी बरतेंगे, है कि नहीं?
1: बिल्कुल,
0: बिछाओ झाड़ दू के सोएंगे और सावधानी लगाएंगे, है कि नहीं?
1: बिल्कुल है।
0: तो यही सब सीजन का असर पड़ रहा है, तो कहीं देख लेते हैं तो हमको बहुत डर लगता है।
1: जी, तो
0: घोष से भी खतरनाक है, दिस इज घोष, भूत, भूत से भी खतरनाक है बिछुआ, बहुत लहर चढ़ता है।
1: जी जी, अब मुझे तो नहीं पता है कि कितना लहर चढ़ता है।
0: नहीं नहीं, एक मारा था ना, तो बहुत, तो उसको एडमिट कराए थे, लगाए थे, तभी से हम इधर साफ सुथरा रहता है ना, बगीचे में उसको काट कूट देते हैं, साफ सुथरा रखता है, कोई है कि नहीं?
1: जी जी बिल्कुल है। तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक है जी मैम, सुनेगी
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
11: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: Pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ring de bajde hai to kehte hai hello.
17: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
18: Bhage bhage firte hai.
19: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
20: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम 90.4 FM में।
21: मैं सुधीर बोल रहा हूँ, झारखंड से।
20: जी, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
21: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
20: मैं भी बढ़िया। क्या हो रहा था?
21: बस मैं ट्राई करते करते अब लगी।
20: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
21: आज सुना दीजिए मैम ईमानदार फिल्म का गाना, सुरेश वाटकर और आशा भोसले की आवाज में, गीत के बोल हैं। हाँ जी, और इस दिल में क्या रखा है, इस गीत के बोल हैं इस तरह के
20: जी। और सुनवाना भी है
21: जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे रेडियो टीम की टीम को और जितने भी रेडियो टीम के श्रोता गाने सबको सुनाना चाहता हूँ।
20: ओके चलिए ठीक है, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
21: जी मैम जी
20: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH-27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
9: Now pick it up, hello, pick it up, hello, now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
2: हमारा भी बढ़िया है
1: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: प्रीति कुमारी, गांव बंगड़ा से।
1: जी, कैसी हैं प्रीति जी?
2: ठीक है मैम।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: दिल वाले गाना, राजा बोतल भर को।
1: जी, और सुनवाना भी है
2: जी आपको और जितने रेडियो रिमझिम सभी दोस्तों को।
1: जी,
2: कब तक बजेगा मैम
1: ये? बज जाएगा आपका आज या कल में।
2: ओके
1: ओके, नाम दीजिए अपना।
2: प्रीति कुमारी
1: जी। चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपके।
2: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई संतान माताओं का इलाज।

0: इजी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90 97 61 60 02।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। और साथियों, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो रिमझिम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं और यहाँ AC भी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा है। दोस्तों, सुबह जब मैं घर से निकला तो लगा कि आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत ख़राब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पे खड़ा है। क्या साथियों, आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। श्रोताओं, मुझे याद है पहले गर्म सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
11: अरे आरजी बाबू, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
10: ठीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये सब मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की इसमें कोई भूमिका भी है। सच बताऊं तो अब ये गर्मी मुझे डराने लगी है, ये पहले जैसी नहीं रही।
11: देखिए आरजे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वो हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
10: ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं।
11: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
10: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है। ओह, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
11: हाँ आरजे, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
10: अच्छा भाभी, अब मुझे ये बताइए कि ये लू क्या होता है? हमने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं कि लू लग गई, उसको लू लग गई, इसको लू लग गई, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर होता क्या है?
11: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
10: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
11: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए गंभीर खतरा है।
10: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हम सबके लिए है, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
11: देखिए आशे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
10: अच्छा दीदी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की तो बात की, लेकिन कई बार हमने सुना है कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और इसको कब लेना चाहिए?
11: बहुत अच्छा सवाल है आरजे। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
10: मतलब ये कि ये सिर्फ बीमारी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
11: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
10: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
11: बिल्कुल आरजे, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
10: हाँ, ये तो सही बात है। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन दीदी क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
11: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
10: ये तो ठीक है, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
11: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की भी कमी नहीं होने देते।
10: अच्छा भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, रिक्शा चलाने वाले लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा, उनका क्या?
11: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वो अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
10: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
11: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
10: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
11: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और भी अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
10: अच्छा भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं?
11: अरे आरजे, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
10: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना वो भी झेलते हैं जितना हम।
11: बिल्कुल आरजे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वो किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
10: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत जरूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें थोड़ी समझदारी दिखाएं तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर हो, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। साथियों याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने कोई ऐसा मसला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
11: हाँ आरजी, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
10: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
11: हाँ आरजे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
10: साथियों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही ये तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
11: और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं, तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
10: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, और जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और साथियों अब वो समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो हम फिर मिलेंगे आप सभी से इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और याद रखिए पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहता है सुनो दिल से।
12: एडमिशन फ्री।
13: कहाँ पर?
12: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
13: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
12: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
13: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
14: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी? ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
15: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
14: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
15: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
14: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
16: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
15: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
18: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
19: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
20: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
19: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
21: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
22: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
21: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
15: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
23: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
24: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
25: हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको क्या सुनवा रहे हैं? लो कचरा कर दिया ना।
26: अरे माधुरी बहन,
27: नमस्ते गोपी भाई।
25: गोपी भाई, हम लोग सोसाइटी की तरफ से एक ड्रामा करने जा रहे हैं।
26: अच्छा है?
25: आपको एक रोल करना है।
26: अरे माधवी बहन, मैंने जब से ये मेक्सी गांव का कारोबार किया है ना, टेम ही नहीं है।
25: गोपी भाई,
26: अच्छा बहन, नाटक का नाम क्या है?
25: लो कचरा कर दिया ना।
26: मैंने क्या कचरा कर दिया? अरे बहन, नाटक का नाम ही तो पूछ रहा हूँ मैं।
25: जो नाटक हम करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है लो कचरा कर दिया ना।
26: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, नाम तो बहन बहुत गंदा, मेरा मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा बहन, ये कपड़ा क्या पहनना है? पेंट शर्ट, धोती झब्बा या झब्बा पजामा?
25: ना पेंट शर्ट, ना धोती झब्बा, ना झब्बा पजामा। परेशान मत होइए, आपको ड्रेस पहननी है मगर शेर, शेर की ड्रेस।
26: शेर की ड्रेस? शेर की ड्रेस क्यों बहन?
25: अरे क्योंकि आपको नाटक में शेर बनना है।
26: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
25: बस एक रौबदार मूंछ लगा देंगे।
26: सिर्फ मूंछ बहन?
25: जी नहीं, पूंछ भी लगेगी।
26: शेर जी का रोल क्या है?
25: आप हैं एक शेर।
26: हाँ।
25: नेशनल पार्क के आसपास दिन ब दिन बढ़ रही आबादी और कचरे से परेशान होकर ये शेर शहर में आ जाता है और कचरा नगर नाम की सोसाइटी में छिप जाता है।
26: वाह वाह।
25: अब जिस समय ये शेर आता है, सोसाइटी का कचरा अवार्ड समारोह चल रहा है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं,
26: और मैं उनको खा जाता हूँ, है ना?
25: ना, ना, ना, ना, ना गोपी साहब, आप एक दुखी और परेशान शेर हैं, आप तो बस हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो जाते हैं।
26: लो बेन, शेर का रोल दिया और वो भी चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े होने का। माधुरी बेन, अभी से बोलता मैं, ज्यादा देर खाली पीली खड़ा रहूं ना तो मुझे नींद आ जाती है।
25: अरे किसने कहा नहीं बोलना है, गरज गरज के बोलना है।
26: क्या बोलना है?
25: हाँ, अरे नाटक के अंत में शेर को पिंजरे में डाल दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पशु प्रेमी साहसी कर्मचारी सुखविंदर सिंह और उनके साथी जब उसे जंगल ले जाने लगते हैं ना, तो शेर को अचानक होश आ जाता है और फिर वो एक अपील करता है।
26: अब आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ।
25: ठीक है, बताइए।
26: होश में आने के बाद शेर पिंजरे को तोड़कर फिल्मी हीरो की तरह बाहर आ जाता है और जोर जोर से गरजता है, सब इधर उधर भागने लगते हैं।
25: गोपी जी, हमारा नाटक कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है। हमारा शेर तो हाथ जोड़कर एक स्पीच देता है। अरे वो तो लोगों से एक अपील करेगा।
26: अपील?
25: हाँ।
26: अच्छा ठीक है, लाइए। कहाँ है वो अपील? हमें याद करना पड़ेगा ना।
25: वो तो कविता मैडम अभी लिख रही हैं। जैसे ही लिख लेंगी मैं आपको दे जाऊंगी।
26: याद से दे जाना बेन, क्योंकि जब से ये गाउन मेक्सी का धंधा शुरू किया है ना, भुलक्कड़ हो गया हूँ। स्टेज पे डायलॉग भूल कर शेरी कांपने लगा तो हंसी उड़ेगी ना।
25: जरूर दे जाऊंगी आपको, कल तक स्पीच मिल जाएगी। अब चलती हूँ।
0: नमस्कार मम्मी भाई।
26: नमस्कार बेन, नमस्कार।
1: अरे माधुरी जी, आइए आइए आइए विराजिए।
25: हाँ,
1: नहीं नहीं नहीं, उस कुर्सी पे मत बैठिए।
25: क्यों?
1: उसकी एक टांग टूटी है।
25: अरे बाप रे,
1: उस पे बैठने वाले तीन लोगों की टांग टूट चुकी है।
25: तो आपने ऐसी कचरा कुर्सी को रखा है क्यों है, जो लोगों की टांग का कचरा करे?
1: देखिए माधुरी जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फेंकने का दिल नहीं होता।
25: बस यही तो मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम होती है। वो टूटी फूटी चीजों को भी ये सोच के नहीं फेंकते कि किसी न किसी दिन काम आएंगी। साइकिल का हैंडल हो या टूटी हुई सैंडल, बिगड़ी घड़ी हो या एक टांग तोड़ू कुर्सी, कुल मिला के ये कि बस वो इकट्ठा करता जाता है कचरा कचरा और सिर्फ कचरा।
1: नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, देखिए हमारी स्वर्गीय दादी जी इसमें बैठती थी। जब भी हम इस कुर्सी की तरफ देखते हैं माधुरी जी, लगता है दादी जी की आत्मा बैठकर चावल बीन रही है।
25: लगता है टूटी कुर्सी में बिठाकर आप दादी जी की आत्मा की टांग तोड़ना चाहते हैं दीनानाथ जी।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं।
25: अरे तो फिर भावनाओं को भूल जाइए, इसे कबाड़ी को दे दीजिए या फिर थोड़ी जेब ढीली कीजिए और इसे बनवा लीजिए।
1: मैं कल ही कारपेंटर को बुलाता हूँ। सच कहता हूँ माधुरी जी, जब से आप हमारी सोसाइटी में आई हैं, सोसाइटी का चेहरा चारों चंद्र की चंचल किरणों जैसा चमकने लगा है।
25: उसी चेहरे

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय आज देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने का यह प्रयास है।
2: हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा।
0: विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश भर के युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं से किए वादे पूरा कर रही है।
3: रोजगार मेला के तहत आज देश के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा जो की अनुकूल मैं देख रहा हूँ लगातार मतलब और उसमें 51,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जो वादा किया देश के वासियों से उस पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना बधाई देते हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बनेगा। श्री चौधरी ने पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
4: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, यह हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है और AI ऐसा सेंटर है। समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी IT डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम AI के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं को कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बक्सर के प्रथम सांसद महाराजा कमल सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब के IIT रोपड़ के 60 चयनित युवा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर IIT रोपड़ के चयनित युवाओं का जत्था पहुंचा। IIT पटना के नोडल अधिकारी डॉक्टर सतीन्द्र कुमार और कृपा शंकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर की।
6: मैं दूसरी बार बिहार आई हूं। मैं पहले पटना साहिब जाके आई थी, तब मैं काफी छोटी थी, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा है कमिंग फ्रॉम IIT रोपड़ इन अ ग्रुप विद स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द कल्चरल हेरिटेज।
5: युवा संगम कार्यक्रम के तहत बिहार दौरे पर आए प्रतिनिधियों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और सामाजिक जीवन से अवगत कराया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पारदर्शी होगी। महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के प्रखंड के पंचायत में होगी। पुरुष शिक्षकों का गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला किया जाएगा। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी।
0: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम जारी किया। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,711 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,450 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद, गया, भभुआ, बक्सर, अरवल, जहानाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में आज शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की आज संपन्न वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्र छात्राओं को छात्रावास की बेहतर सुविधा तथा वाचनालय और पुस्तकालय को आधुनिक बनाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और जारी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के अन्य सदस्य और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बैठक के दौरान हुई चर्चा के बिंदुओं की जानकारी दी।
3: सीनेट में छात्र शिक्षक कर्मचारियों संवाद का माध्यम, उनका प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, कर्मचारी संघ के नेता का स्थानांतरण, छात्र नेता जो बच्चे पीएचडी के लिए दूसरी मांगों के लिए है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कुलपति महोदय से वार्ता करके समस्या का निदान करिए।
2: बैठक के दौरान परिसर के बाहर आईसा, AISF और अन्य छात्र संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। C सीनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाले योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: भाकपा माले ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 24 मई को पटना में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों की असली समस्याओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर टाटानगर थावे एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने 52 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। नवादा के कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया जीएमसीएच अस्पताल रोड में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 1 नगर निगम कर्मचारी घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: देखो, थोड़ा और चमकाने के लिए हम अगले संडे शाम को 7 बजे एक ड्रामा करने जा रहे हैं।
5: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है माधुरी जी। देखिए, हमारे लिए भी कोई रोल हो तो बताइएगा। अजी, हम जौनपुर में बहुत नौटंकी किए हुए हैं, लैला मजनू, सत्यवादी हरिश्चंद्र वगैरह वगैरह।
4: हाँ हाँ, ठीक है दीनानाथ जी, लेकिन हमारा ड्रामा ऐसा नहीं है। हम तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ही लो कचरा कर दिया कर रहे हैं।
5: वाह वाह वाह वाह, तो फिर ऐसा कीजिए माधुरी जी के कचरे का रोल छोड़ के आप हमें कोई भी रोल दे दीजिए, हम करेंगे। और ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे, अरे वाह, ये दीनानाथ तो छुपा रुस्तम निकला।
4: बहादुर
6: मेमसाहब, उधर उधर शेर घुस गया है।
4: शेर क्या बकवास कर रहा है?
6: हम बकवास नहीं कर रहा मेमसाहब, हमने टॉर्च मारा तो हमको देख के वो गुर्राने लगा।
4: हाँ? अरे बापरे, कहीं नाटक सच तो नहीं हो गया?
6: वो देखो वो शेर इधर आता है। मेम साहब हमको बचा लो, हमको बचा लो
4: बहादुर।
5: अरे बहादुर अंकुल, मैं शेर नहीं हूँ, गोपी भाई हूँ। ये देख
6: गोपी भाई साहब।
4: लेकिन गोपी भाई, रात में आप शेर की ड्रेस पहन के लोगों को डराते क्यों फिर रहे हैं?
5: अरे ड्रेस रिहर्सल कर रहा था मैं।
6: अरे पर साहब, हमारी तो जान निकल गई थी साहब।
4: ठीक है गोपी भाई, जाइए अब ड्रेस उतार के रख दीजिए, नहीं तो कल रात तक ना मूंछ बचेगी और ना ही पूंछ।
5: हाँ।
4: पूंछ पूंछ कहाँ गई? अरे कहाँ गिरा दिया आपने पूंछ?
5: अरे यही तो थी बहन। अरे कहाँ गई है?
4: ओफो,
5: लगता है उधर गार्डन में शेर, यानी जब मैं गुलाब के पास छिपा था ना।
4: हाँ।
5: तभी लगता है कांटों में फंस गई।
4: हे भगवान, कल ड्रामा है गोपी भाई, अब बिना पूछ का शेर कैसा लगेगा आप ही खुद सोचिए ना।
7: ओ पहन जी मैं क्या ऐ रही जी, शेर दी पूछ।
4: ओ पहन,
7: मगर इस पूछ की वजह से ड्रामे से पहले ही ड्रामा हो गया।
4: अच्छा, आपकी ड्रेस का क्या हुआ सुखिंदर पाजी? याद है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहादुर गार्ड हैं जो शेर को वापस जंगल ले जाता है।
7: हाँ जी याद है जी, मगर ड्रेस नहीं मिली जी।
4: ओफो, तो फिर आप क्या पहनेंगे प्राजी?
7: पहनजी तुम फिक्र ना करो, मैंने ड्रेस जो है ना अरेंज कर ली है।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, पिंजरा कब बनेगा?
5: मेरे लिए?
4: हाँ
5: ओ जी मैं अभी ना खाना खा लेता हूँ, फिर घंटे दो घंटे के बीच में बच्चा पार्टी को लेके पिंजरा बना देता हूँ। गोपी भाई आप ही आ जाना, नाप लेनी पड़ेगी ना शेर की।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
4: शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। पेश है कविता मैडम और उनकी दादी विमला मैडम द्वारा लिखा नाटक, लो कचरा कर दिया ना। इस खूबसूरत रंगीन हसीन दुनिया के अंदर बहुत दूर नहीं, बस यही कहीं है एक कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी, जिसका हर घर हर हर डगर कचरा घर। आज दिए गए हैं कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी में कचरा अवार्ड।
9: हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम माधवी, पहले अवार्ड विनर मास्टर भोपू। भोपू कुमार जी,
5: जी?
9: कचरा चैनल की तरफ से आपको कचरा अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन।
5: थैंक यू जी, थैंक यू।
9: आपको कैसा लग रहा है?
5: बस माधवी जी, जी कुछ कचरा कचरा सा, यानी अच्छा अच्छा सा लग रहा है।
9: ओके ओके, अच्छा कचरा अवार्ड आपको ही क्यों दिया गया है?
5: एक दिन में 50 किलो कचरा अकेले फैलाया है जी।
9: थैंक यू थैंक यू। माधवी अनाउंसर जी, जरा सुनिए ना प्लीज, मेरा भी तो इंटरव्यू कर लो ना। अरे मुझे भी तो अवार्ड मिला है।
10: आपने भी कोई रिकॉर्ड बनाया है क्या?
9: हाँ।
10: जिसके लिए आपको अवार्ड मिला?
9: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो फ्लैट की खिड़की से वो केले के छिलके फेंक कर एक हफ्ते में 173 लोगों को गिराया मैंने, और भगवान झूठ ना बुलाए आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं सका। चलो अब जल्दी से मेरा इंटरव्यू कर लो। हाँ
10: अरे भाई हो तो गया इंटरव्यू।
9: अरे ये कह क्या रहे हैं आप, अभी कहाँ हुआ है मेरा इंटरव्यू? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं।
10: देखिए इससे ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। थैंक यू।
11: कचरा करने वाले कचरा पिए जा, कचरे के बदले बीमारी लिए जा।
9: अरे बहादुर सो रहा है क्या? अरे उठना स्टेज पे जाओ, तेरी एंट्री आ गई, चल जा जल्दी।
6: जी मिम साहब, जी मिम साहब, सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब जी।
8: अरे बोल तो क्या बात है?
6: साहब जी उधर उधर एक 5 फुट का शेर आया है।
8: शेर आया है? अरे तो स्टेज पे मतलब ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा?
6: आ रहा है साहब जी, मगर लगता है थोड़ा टाइम लगेगा साहब जी।
8: क्यों?
6: साहब जी वो शेर का जो पूछिए ना, एक शरारती बच्चा खींच के भाग गया साहब जी।
9: गोपी भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जल्दी चाहिए, नाटक रुका हुआ है।
12: अरे बिना पूछ के कैसे जाऊँ कविता बहन?
9: हाँ तो ठीक है ना, बिना पूछ के ही जाइए जाइए जाइए। अरे चाहिए ना।
12: बचाओ, अरे बचाओ शेर आ गया, अरे शेर आ गया। सेक्रेटरी जी फोन लगाइए। हेलो, हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखिए कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक शेर आ गया है जी, आप फौरन आ जाइए। हाँ शेर की दुम कट गई है, हुआ लग रहा है। अरे शेर तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है। बोलो भाई शेर, तुम्हें क्या परेशानी है?
13: यही कि आपकी सोसाइटी के लोग कचरा फेंकते फेंकते हमारे जंगल में आ जाते हैं, उन्हें रोको नहीं तो मैं ऐसे ही शहर में आ जाऊंगा और सबको खा जाऊंगा।
12: क्षमा करें शेर जी, कचरा फैलाना तो हमारी आदत है, हमारी फितरत है, हमारा शगल है, हमारा फितूर है। हम अपने हाथों को कचरा फैलाने से नहीं रोक सकते।
13: नहीं रोक सकता? तो ठहर जा बदमाश तुंदियत, मैं तेरा हाथ ही चबा जाऊंगा।
12: आपको क्रांतिकारी शेर नहीं, विनम्र और दुखी शेर बने रहना है।
13: नहीं, आज मेरे अंदर एक सच्चे शेर की आत्मा आ गई है।
12: क्या?
13: जो आज कचरा फैलाने वालों को मजा चखाएगी।
12: नहीं।
13: वाह, ना तेरा हाथ तो कितना स्वादिष्ट है।
12: तो मैं आ गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड साहब आ गए
13: जी।
12: अब तुझे मजा चखाएंगे शेर के बच्चे।
13: पर उसके पहले मैं तुझे मजा चखाऊंगा बिल्डिंग सेक्रेटरी कचरा राज।
14: अरे बचाओ बचाओ,
7: खामोश एकदम। मैं अब इस शेर पर इंजेक्शन फेंकने जा रहा हूँ।
9: अरे माधुरी, ये कचरा पति क्यों चीख रहे हैं? अरे चीखना तो शेर को चाहिए ना।
4: अरे शेर हट गया था कविता मैडम, और इंजेक्शन जाके लग गया आपने सेक्रेटरी साहब कचरा पति को। ओ गॉड।
7: ओए माधव, ओए गोविंद, ओए पिंजरा किधर है? पिंजरा
6: साहब जी इधर, पिंजरा तो इधर ही पड़ा है साहब जी।
7: इसका दरवाजा खोल।
9: अरे माधुरी, ये सब हो क्या है?
4: मैडम लगता है सबने मिलकर नाटक का कचरा करने की प्लानिंग कर ली है। अरे क्या कर रहे हो यार?
13: कचरा देव से प्रार्थना करने वाले प्रेसिडेंट कचरा पति।
12: जी जी।
13: चल फटाफट पिंजरे में घुस। ठीक है, बिल्कुल ठीक, वहीं बैठे रहो। कल दिन में इस पिंजरे को लेकर सारे शहर में तीनों का जुलूस निकालूंगा, आप सब देखने आइएगा।
4: कविता मैडम देखिए ना, शेर ही सबको पिंजरे में डाल रहा है। पर्दा गिरवा दूं क्या?
9: अरे जल्दी से गिरवा दूं।
13: ये पर्दा क्यों गिरा रहे हैं भाई? अरे भाई माधुरी बहन, अभी तो शेर की अपील बाकी है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6252162112 पे।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाली मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
7: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली, योजना प्रभाग ब्यूरो BOP NHA सेल के अंतर्गत पूर्णता संविदा के आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पदों का नाम जूनियर कंसल्टेंट NHA सेल, BOP डिवीजन, MOH एंड FW। रिक्तियों की संख्या 2 है और आयु सीमा 55 वर्ष है। इन्हें मिलेगा 40,000 रूपये से 70,000 रूपये। जहाँ तक योग्यता और अनुभव की बात है, आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR www.nhsrcindia.org या फिर www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तारीख होगी 1 जून 2026। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इस संस्थान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी यहां के वेबसाइट से, यानी nsi.gov.in। निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 208017। यहां आप भेज सकते हैं 8 जून 2026 तक अवश्य ये आवेदन पहुंच जाने चाहिए। सशस्त्र बल अधिकरण AAFT क्षेत्रीय पीठ कोलकाता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता मानदंड, प्रारूप एवं आवेदन से संबंधित अन्य शर्तों आदि का विवरण आप पा सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट की जानकारी आपको दे दें www.aftkolkata.nic.in। एक बार पुनः सुन ले, www.aftkolkata.nic.in और www.aftdelhi.nic.in। जमा करने की अंतिम तारीख होगी 5 जून 2026। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का प्रमुख मिनी रत्न उद्यम। इस डोमेन में विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों YP से संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास। पदों की संख्या 2 होगी। YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, पदों की संख्या 2 होगी। YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, पदों की संख्या यहां पर भी 2 होगी। YP डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इत्यादि, एक पद यहां रिक्त है। YP कंपनी सचिव, एक स्थान यहां रिक्त है। YP सामग्री प्रबंधन, एक स्थान रिक्त है। YP मार्केट रिसर्च, डेटा व्याख्या और वित्तीय विश्लेषण, एक स्थान रिक्त है। YP सिविल इंजीनियर, एक स्थान रिक्त। YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक स्थान रिक्त है। YP MSME बिजनेस आउटरीच, 2 स्थान रिक्त है। YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक, 2 स्थान रिक्त है। YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ, एक स्थान रिक्त है। नौकरी के विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें और आवेदन पत्र के लिए कृपया आप NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in के करियर अनुभाग पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2026। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। दिल्ली में 2 पूर्णकालिक सदस्य तकनीकी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तार में विज्ञापन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा moef.gov.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
8: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: प्रसाद क्लिनिक।
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
11: क्यों, क्या हुआ है?
12: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
11: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
12: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
11: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
15: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
16: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
15: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
16: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
15: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
16: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
17: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
15: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज। शानदार

0: कार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ।
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 6300 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
10: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
10: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। ईंधन बचाने को लेकर पैदल ही अदालत पहुंचे आज सभी न्यायाधीशगण। ताइक्वांडो चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मंगलपुर पुल में आई दरार से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा दी गई रोक। सीमा विवाद को लेकर 50 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से हो गया गायब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। अमेरिका और इराक के युद्ध से उत्पन्न हुए ईंधन की समस्या से जूझ रहे भारत के लोग भी अपने अपने तरीके से ईंधन बचाने के उपाय कर रहे हैं। इसको लेकर जहां सरकार और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी लोगों से डीजल पेट्रोल और गैस को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं आज इसी कड़ी में न्यायपालिका ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों के बीच जागरूकता का संदेश देने के लिए सभी न्यायाधीशगण अपने आवास से न्यायालय में पैदल ही पहुंचे। इसको लेकर सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी और बंजारी में स्थित न्यायालय के आवासीय परिसर से सभी न्यायाधीशगण पैदल चलते हुए व्यवहार न्यायालय के नए परिसर में पहुंचे। इस दौरान इस पूरे आयोजन की अध्यक्षता गोपालगंज के जिला जज गीता गुप्ता ने की। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अनावश्यक वाहन प्रयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान पत्रकारों ने जिला जज गीता गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा,
12: सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधुओं को न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों ने ये निर्णय इसलिए लिया कि हम जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल और गैस की थोड़ी क्राइसिस चल रही है, उसकी जो उपलब्धता में जो कठिनाई आ रही है उसको देखने के लिए ये देश हित में हमारे द्वारा लिया गया एक छोटा सा कदम है। और इस के माध्यम से मैं लोगों से भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सभी अपने अपने स्तर पे सिर्फ छोटा सा ही एक स्टेप लेंगे, हर आदमी के मन में ये होता है कि सिर्फ हमारे ना जाने से क्या होगा, लेकिन अगर हर आदमी अपने स्तर पे एक दिन के लिए भी किसी भी चीज़ का त्याग करेगा, चाहे वो डीजल पेट्रोल का हो गया चाहे गैस का हो गया, तो निश्चित रूप से हम थोड़ा भविष्य के लिए अच्छा उसको बचा सकेंगे और जो हमारी अभी उपलब्धता की जो मात्रा है, जो कमी है, उस चीज़ को हम दो दिन और आगे तक इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम ज़रूर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी गोपालगंज की जनता और मेरा ये संदेश सार्वजनिक रूप से ये है कि ऐसा नहीं है, हम सभी भी देश के साथ हैं और देश हित के लिए हम सब भी कष्ट उठाने के लिए एकदम तैयार हैं और कष्ट उठा सकते हैं। तथा सभी को ये चाहिए कि एक दिन के लिए स्वेच्छापूर्वक जब उसको सुविधा लगे तो अपनी इन सुविधाओं का जो देश हित में हमें कहीं ना कहीं काम आ सकती है उनका त्याग करना चाहिए।
13: कहाँ से कहाँ मार्च निकाला?
12: आवाज से सभी न्यायिक पदाधिकारी कोर्ट तक आए हैं और हमारा एक दूसरा जुडिशियल आवाज है बंजारी, वहाँ के भी सभी जुडिशियल पदाधिकारी आज पैदल ही यहाँ कोर्ट तक आए हुए हैं।
11: बिहार सरकार खेल विभाग और राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला उत्कृष्टता केंद्र हेतु ताइक्वांडो खेल का चयन ट्रायल अंबेडकर भवन गोपालगंज में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका ताइक्वांडो खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। चयन ट्रायल में बेगूसराय, मुंगेर, पटना, सिवान, छपरा, मोतिहारी एवं गोपालगंज जिलों के कुल 35 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा प्रतिनियुक्त ताइक्वांडो कोच सुशील कुमार एवं विवेक कुमार ने सभी खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट एवं कौशल प्रशिक्षण किया। बैटरी टेस्ट के अंतर्गत खिलाड़ियों की हाइट, वेट, वर्टिकल जंप, शटल रन, 30 मीटर स्प्रिंग, 800 मीटर रन, बॉल थ्रो एवं रिएक्शन टाइम की जाँच की गयी। वहीं ताइक्वांडो कौशल परीक्षण में फुटवर्क, बेसिक किक, एडवांस किक एवं फाइटिंग स्किल का मूल्यांकन भी किया गया। इस चयन ट्रायल को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षक मुरलीधर राय, पिंटू कुमार राय, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, बसंत तिवारी एवं विनीत कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले में संभावित बाढ़ एवं कटाव की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के द्वारा कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से लेकर विशंभरपुर के भैंसही तक तटबंधों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति, साफ सफाई, सुरक्षा कार्य एवं चल रहे बाढ़ निरोधी कार्यों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने तटबंधों पर उगी झाड़ियों एवं अवरोधों को गंभीरता से लेते हुए जल मिश्रण विभाग सिवान से संबंधित कार्यपालक अभियंता को कड़ा निर्देश दिया। 15 जून 2026 तक हर हाल में सभी तटबंधों की साफ सफाई का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बरसात एवं बाढ़ के मौसम से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में मंगलपुर पुल का भी अवलोकन किया। यहां चल रहे बाढ़ नियंत्रण कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गोपालगंज को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 15 जून से पूर्व किसी भी परिस्थिति में कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर गोपालगंज जिले से बेतिया को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने मंगलपुर पुल के स्पाइन ज्वाइंट में दरार की बातें आई। बताया जा रहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया है, जबकि छोटे और हल्के वाहनों का परिचालन फिलहाल जारी है। पुल में दरार की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, SDPO अनिल कुमार, CEO रजत बर्णवाल, कुचायकोट के CEO मणिभूषण कुमार सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की है। इसके चलते बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों का परिचालन रोका गया है। हालांकि साल 2020 में बाढ़ और नदी के दबाव के कारण इसके पहुंच पथ में दरार आई थी, लेकिन बाद में इसे मरम्मत करके सुचारू कर दिया गया था। इसके संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए 2023-24 में भी नए सड़क निर्माण कार्य किए गए थे। जिलाधिकारी ने बताया है कि पुल के ज्वाइंट स्पैन में समस्या सामने आई है जो गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने इसकी जानकारी IIT पटना और तकनीकी विशेषज्ञों को भी दी है ताकि विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा सके। अब विशेषज्ञों की टीम पुल की स्थिति का आकलन करेगी और मजबूती तथा मरम्मत को लेकर आवश्यक सुझाव भी देगी। उसके बाद ही भारी वाहनों के परिचालन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस पुल के बनने से गोपालगंज से सीधे बेतिया की दूरी 120 किलोमीटर कम हो गई। इस महासेतु की लंबाई लगभग 1920 मीटर यानी 1 किलोमीटर 92 मीटर है। इस पुल निर्माण में लगभग 330 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस पुल के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और दूरी लगभग 120 किलोमीटर तक कम हो गई। मीरगंज नगर परिषद और हथुआ प्रखंड के सौरेजी ग्राम पंचायत में सीमा विवाद के बीच नरैनिया और राजापुर के लगभग 50 परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। ना तो ये लोग ग्राम पंचायत में हैं और ना ही नगर परिषद के क्षेत्र में हैं। मतदाता सूची में दोनों ओर से नाम इनका गायब हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ के 50 परिवार को सरकार के लाभ से फिलहाल वंचित होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत नगर परिषद क्षेत्र मानकर यहाँ का विकास कार्य नहीं करता, जबकि नगर परिषद कभी उस क्षेत्र को शहरी इलाके में शामिल ही नहीं करने की बात कह रहा है। अब नतीजा यह है कि यहाँ के लगभग 300 मतदाता वोट देने से भी वंचित रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि सौरेजी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 को नगर परिषद मीरगंज में विलय करना था, लेकिन नगर परिषद के परिसीमन के समय वार्ड संख्या 10 का केवल वह भाग जो राजापुर राजस्व ग्राम में आता है उसी को ही विलय किया गया। वार्ड संख्या 10 और 11 में रहने वाले 50 परिवार वार्ड को ग्राम पंचायत का हिस्सा बताकर छोड़ दिया गया। वार्ड संख्या 10 के निवासी रिजवान अहमद, जयवीर पांडे, अमोद चौबे, अरविंद चौबे, वीर बहादुर सिंह, राकेश कुमार इत्यादि का आरोप है कि 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव के समय उन्हें यह कहते हुए ग्राम पंचायत चुनाव से अलग कर दिया गया था कि ग्राम पंचायत राज सौरेजी के नहीं है। अब वर्तमान में जब पंचायत आम निर्वाचन 2024 के लिए प्रारूप प्रकाशित किया गया तो इन लोगों का नगर परिषद में भी नाम नहीं है। अब ये सभी लोग परेशान हैं और प्रशासन के पास दौड़ लगा रहे हैं। BDO ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के नामों के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने के लिए यहाँ के वोटर उनके पास पहुंच रहे हैं और दावा भी पेश कर रहे हैं, पर BDO सुमित कुमार ने कहा कि वे ठीक नहीं कर सकते। आप लोगों को जहां जाना है वहां जाएं। ऐसी स्थिति को लेकर बहुत असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। नगर परिषद मीरगंज के द्वारा ग्राम पंचायत का हवाला देते हुए इसे छोड़ दिया गया और अब वर्तमान प्रकाशन में भी गांव के लोगों को जनसंख्या और वोटर लिस्ट में लुप्त कर दिया गया है। हालांकि जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस मामले की जांच होगी और इस संबंध में जांच कर उचित निर्णय भी लिया जाएगा। फुलवरिया थाना की पुलिस ने 20 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक टेम्पो भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ग्राम सेलार चौवर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। यहां टेम्पो को पकड़ा गया और इसके अंदर से 20 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसमें साजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के ईश्वर शाह का पुत्र बताया जा रहा है। दूसरा जावेद शाह, यह थाना पटेरवा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पिंडरा कनक का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर अब पुलिस ने इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार आरोपी अर्जुन महतो को गिरफ्तार कर लिया। यह सिवान जिले के बसंतपुर के रहने वाले शिवदेनी महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इसे गिरफ्तार कर आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कृषि अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा पूर्णिया के धमदाहा गांव में कृषि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों में संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित 87 किसान प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारियां दी गई। किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग करने के फायदे समझाए गए तो वहीं सामयिक पोषक तत्व प्रबंधन तथा मृदा परीक्षण आधारित खेती की व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान की गई। जादवपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त अरविंद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। यह जादवपुर के नवादा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रोशन कुमार को गिरफ्तार किया। यह हथुआ के रतन चक निवासी ब्रिज किशोर कुंवर का पुत्र बताया जा रहा है। इसके मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 47 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईंधन बचाने को लेकर पैदल ही अदालत पहुंचे आज सभी न्यायाधीशगण। ताइक्वांडो चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मंगलपुर पुल में आई दरार से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा दी गई रोक। सीमा विवाद को लेकर 50 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से हो गया गायब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
14: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
15: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
16: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
17: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
16: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
18: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
19: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
20: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 97097056575।
2: रियाज रेट्रो।
21: बच्चन रेखा के गुजरे बर्थडे के नाम, शेरों वाली के नाम, दुर्गा पूजा के नाम, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे।

0: बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे।
1: आप हिंदू हो या मुसलमान, बिलीवर एग्नोस्टिक या एथिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट या रैशनलिस्ट, कुछ भी हो,
0: आनंद बख्शी की इस एक लाइन से कौन है जो रिलेट नहीं करेगा। दैट्स द पावर ऑफ द ट्रू पोएट, एक ऐसा इंसाइट जिसको हम नकार ना सके। बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। फिल्म सुहाग, आवाजें आशा जी, रफी साहब। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है, तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। संकट मोचन हनुमान, विघ्नेश्वरा गणेश, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, बात तो एक ही है ना, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। कितना जरूरी है ना ये हमारे लिए, दिस सेंस दैट समवन हैज माय बैक। डिवाइन हो या ह्यूमन, सबसे अंधेरी रात में, सबसे मुश्किल की घड़ी में, जब हर मोड़ पर लगे विपदा या बाधाएं हैं, कितना रियश्योरिंग लगता है ये सोचकर कि कोई तो है इस संकट से हमें उभारने के लिए। जब ये भरोसा होता है तो शायद हम खुद ही मुश्किलों से जूझ लेते हैं, पर इस एहसास का होना कितना जरूरी है ना, कितना ढाढ़स बंधाता है। सच अ सेंस ऑफ शेल्टर। मैंने उस दिन ट्विटर पर दोबारा वो साहिर साहब का कलाम शेयर किया था, फ्रॉम कभी कभी। तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर ही असली हयात है, मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार कर मेरे साथ है, मेरी बात का मेरी हम नफज, तू जवाब दे कि ना दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो हजार बातों की बात है। इंसान हो या भगवान, हाउ क्रिटिकल इट इज कि हमें जिंदगी में ये आश्वासन हो कि कोई है। एक्चुअली उसके बाद तो सारे झंडे हम खुद ही गाड़ लेते हैं, सारे पहाड़ भी चढ़ लेते हैं, असुर का विनाश भी कर लेते हैं, पर हाथ में जो खड्ग है उसकी धार उसी भरोसे से बनती है शायद। इस बात पर कालिया से, तुम साथ हो जब अपने चलाने का बड़ा मन है पर नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती, समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। बहरहाल कुछ और ही सही, खूबसूरत संगीत की कमी है क्या।

0: कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, दिल में किसी का प्यार छुपा कर कई बार ऐसा ही लगता है ना, चाहे वो प्यार इस लोक का हो या अलौकिक, अंदर कुछ रोशन सा कर देता है ये एहसास। पर वो फेस्टिवल्स के इस मौसम में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि हम काबिल तभी होते हैं जब अंदर ये नूर हो। फिल्म ममता, आवाज लता जी और हेमंता। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, संगीत रोशन, बोल मजरू साहब, और उससे पहले द लवली सेमी क्लासिकल तू जो मेरे सुर में, चिच्चोर, हेमलता और येसुदास का गाया, संगीत और बोल दोनों रविंद्र जैन।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्यों चाहिए होता है हमें ये दिलासा? कितनी तो न्यू एज राइटिंग, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं हम कि हम अकेले ही काफी हैं, सारी ताकत हमारे अंदर ही है, हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फ्री, आई एम कम्प्लीट। बार बार पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, मान भी लेते हैं, एंड येट So strange this need. कभी ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं तो कभी खुदा के बंदों को ही खुदा बना लेते हैं। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी, बहुत पॉपुलर, सब प्यार करते हैं उससे, परिवार, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, जहां जाती है भीड़ जम जाती है। उसके बर्थडे पर उसका फोन बजना बंद नहीं होता, नौकरी बदलती है तो 8-10 फेयरवेल पार्टीज मिलती हैं। फिर कुछ साल पहले वो सिंगल हो गई, लंबे अरसे के बाद शादी टूट गई उसकी, जिस भी वजह से। एक बार जब वो ऐसे ही दोस्तों की भीड़ में बैठी थी, उसने मुझे मैसेज किया ये कहकर कि क्या है, किस बात की कमी है, इतना सारा प्यार मिलता है इतने लोगों से, फिर भी उस एक खास की कमी क्यों महसूस होती रहती है, क्यों ये अधूरापन फिर भी काटता है, क्यों हम अपने आप में और अपनों में संपूर्ण नहीं हो पाते उस एक खास जज्बे के बिना। I had no answer, वही घिसी पिटी क्लीशे बातें बोलने का मन नहीं किया, क्योंकि बात तो सच है। कमजोरी कहिए या कंडीशनिंग, उस एक खास एंकर की जरूरत हम सबको होती है ना?
10: तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल

महेंद्र कपूर फिल्म हमराज, रवि जी और साहिर फिर से। उससे पहले दी अटली स्वीट तस्वीर तेरी दिल में, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी फिल्म माया, सलिलदा मजरू सुल्तानप्री। फेस्टिवल्स का मौसम है और डिप्रेसिंग बातें नहीं करनी, जो मैं अक्सर कर जाती हूँ, क्योंकि त्योहार के दिन एक रिफ्लेक्शन का भी वक्त होता है ना, शायद इसलिए। न्यू ईयर से ज्यादा शायद ये वो टाइम है जब हमें एक और साल गुजरने का एहसास होता है। दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, गणपति, जो भी त्योहार आप सबसे ज्यादा मानते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, उन्हीं त्योहारों के ढोल ताशे शोर सुगंध के पीछे, उन शामों के नीचे बसती है वो सोच हमारी कि अरे एक और साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये वो टाइम भी है हमारे देश में जब गर्मी रास्ता बनाए सर्दियों के लिए, पेड़ों से पत्ते भूरे होकर झड़ने लगे, हवा में एक ठंडी सी लहर महसूस हो, एसी बंद करके पंखे की हवा में सो जाएं हम, खिड़कियां खोल दें क्योंकि धूप की खौलती बूंदें अब नर्म होने लगी हैं। हमारे त्योहार होते भी तो सेंसरी ओवरलोड है ना, खुशबू, रंग, रोशनी, नए कपड़े, अलग अलग पकवान, आंखों को, कानों को, त्वचा को छूते अनगिनत नए एहसास। कितना समय कोई अपने अंदर इतनी खुशी के बीच में ही कभी कभी दिल भर आता है, तब जश्न के साथ प्रश्न भी उठते हैं, क्या हासिल किया, क्या खोया, कौन अपना था जो पराया हो गया, और कौन ऐसे अजनबी थे जो करीब आ गए, कौन दूर चला गया, कौन पास आया।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दे श्री कृष्णा साड़ी को।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

इस गीत से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। फिल्म नया दौर, दी ओपी नैयर, आशा जी, रफी साहब, कल्ट क्लासिक मांग के साथ तुम्हारा, लिखा साहिल लुधियानवी ने। आई एम नॉट डूइंग दिस डिलिबरेटली टुडे। कितनी लाइट टच से भी लिख जाते थे ना वो कभी कभी। पर उससे पहले जो गीत सुनाया उसको लेकर आपके माथे पर सवालिया निशान दिखा है मुझे। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने, 80s की एक शबाना आजमी विनोद मेहरा फिल्म। सुना आपने एक अननोन लता किशोर ड्यूएट, संगीत उषा खन्ना, शायरी निदा फाजली साहब की। चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है, जब से तुम हो मेरी निगाहों में हर नजारा हसीन लगता है। सो ट्रू ना, शायद तन्हाई और किसी के साथ में बस इतना सा ही फर्क है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस तो सेम ही रहते हैं पर उनको एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल जाता है। मैं आपके साथ रिया, और पता है क्या स्ट्राइक किया मुझे अभी, कि शायद हम इसीलिए खुदा को लेकर इतनी लड़ाई करते हैं। गवारा नहीं होता कि हमारे भगवान को कोई नकारे, क्योंकि उसके होने या ना होने पर जब कोई बहस विवाद होते हैं तो लगता है वो छत्र छाया, वो महफूज जगह छिन रही है, और उसके हिलते ही हमारा अपना वजूद खतरे में है। डोंट ट्राई एंड टेल मी दैट माई गॉड इज फॉल्स, बिकॉज देन आई एम फॉल्स। मैंने तो अपनी सारी पहचान, अपनी शक्ति, अपना आत्मसम्मान, कुछ भी करने की काबिलियत उसी के साथ जोड़ रखी है ना। हमारे खुदा को मिटाओगे तो हम अंदर से मिट जाएंगे, एंड दैट माई फ्रेंड इज सो स्कैरी। वरना सोचकर देखिए, कोई और अगर कुछ और विचारधारा रखता है तो उससे हमें क्यों फर्क पड़े, अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो।

so beautiful na, to be able to let go and lean like this. Jalan hoti hai mujhe kabhi kabhi of people of unshakable faith. Geeta Dutt ke saath Sudha Malhotra, do khoobsurat awaazein, film Kala Bazaar, Na Main Dhan Chahun Na Ratan Chahun, SD Barman aur behtareen bol Shailendra ji ke. Kabhi dhyan se sunna phir se. लता जी की आवाज में इससे पहले एक भजन थोड़ा सा अननोन, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, शंकर जयकिशन हसरत जयपुरी, और स्क्रीन पे ब्रेथ टेकिंग लगी हैं वहीद रहमान, बिल्कुल मीरा बाई के रूप में मानो, बहुत ही सुंदर लगी हैं। त्योहार अच्छे से मनाइए, अंदर से रोशन रहिए, खूब खाइए खिलाइए और प्यार बांटिए भरपूर, खुश रहिए। सहारे के दिन है, भरोसे के दिन है, उनसे मिलने के दिन हैं जो साल में शायद इसी वक्त मिलते हैं बस, पर फिर भी एक गहरा सा रिश्ता लगता है क्योंकि ये अहम कुछ दिन वो साथ बिताते हैं। ईद नवरात्रों से लेकर दशहरा दिवाली तक जो लोग साथ होते हैं वो कहीं ना कहीं खास होते हैं, चाहे वो बाकी साल कितना भी मसरूफ रहें, कितनी भी दूर चले जाएं। उन तमाम रिश्तों के नाम, ह्यूमन डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शंस के नाम, और उनसे मिलती शक्ति ताकत ढाड़स भरोसे के नाम एक गाना, डेयर टू ड्रीम डेयर टू लव।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: तू जो है
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लुतत्व से मोहब्बत हो।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: ना तो तू जरे जेगा।
1: ठीक बचा।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपन बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। नेहा बात कर रही हैं
1: जी। पहचान गए।
0: और सब बताइए, खाना पीना हुआ कि नहीं? अभी
1: अभी खाना नहीं हुआ, नाश्ता हुआ।
0: अभी नाश्ता हुआ है। काम धंधा निपटा लिया? जी जी, मेरा हो गया है।
1: हाँ, काम निपटा लिया है।
0: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है अभी आपको?
1: गाना सुनना है हमसे तुमसे प्यार हो गया, यही फिल्म का गाना।
0: हमको तुमसे प्यार हो गया इस मूवी से, कोई भी गाना की गाना का नाम बताइएगा।
1: गाना माहिर है
0: जी,
1: यही गाना।
0: और गाना सुनवाना भी है?
1: गाना आपको जितना रेडियो रिमझिम आरजे है सब दोस्त सुनता है सबको।
0: ओके, चलिए तो प्ले करें
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गुलाम हुसैन भाई से बोल रहे हैं, मुझे गाना सुनना है।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
1: अभी काम कर रहे हैं हम। मुझे सुनना है, क्या तुम्हें पता है गुलशन ये वाला गाना सुनना है।
0: जी, और गाना सुनवाना भी है
1: जी। सबसे पहले आपको मासूम कौशल जी, अरमान कमरान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबीना जी, दीप्ति जी, हिना जी, गुड़िया, अमनम जी, अमिनका जी, सभी को सुनवाना चाहता
0: हूँ जी। तो प्ले करे गाना आपके?
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं चॉइस में कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: Hello? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
6: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से।
5: जी क्या हाल चाल है सुधीर जी?
6: हालचाल तबीयत कुछ गड़बड़ है मैम, इसलिए सोचे 11 बजे के बाद लगाएंगे तो बहुत बिजी 12 बजे के बाद लगी।
5: जी जी, चलिए तभी तो कॉल लग गया ना।
6: जी कॉल तो लग गई। जी
5: जी जी, तो क्या हो गया आपको अभी?
6: जी आज सुना दीजिए मैम, प्यार के गाना आस्था भोसले और किशोर कुमार की आवाज में के बोल हैं, सारा दिन सताते हो रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हैं।
5: जी और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
6: जी सबसे पहले मैं आपको आपके रेडियो रिमझिम को पूरी टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
5: ओके चलिए, तो प्ले कर दिए गाना आपके।
6: थैंक यू मैम,
5: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिल्म चॉइस में कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी हम बना रहे
0: चल रहा
1: ठीक हो रहा हूँ। सुनाइए बढ़िया है।
0: बढ़िया है,
1: बहुत तेज धूप निकल रहा है, गर्म बहुत बड़ा रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये मूवी है कुली नंबर वन का, गोविंद का।
0: कुली नंबर वन से कौन सा गाना?
1: जेट की दुपहरी में पांव जले।
0: और सुनवाना भी है
1: जी आपको, जितने श्रोता
0: जी करेगा ना ये आज या कल में कभी भी आ जाएगा।
1: ठीक है
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: सलामुअलैकुम।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
6: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
5: जी कैसे हैं मनान जी?
6: ठीक है।
5: तो क्या हो रहा था अभी?
6: अभी आज हो रहा है घर का पेंटिंग हो रहा है।
5: अच्छा, कुछ फंक्शन है क्या घर में? कैसे?
6: नहीं फंक्शन नहीं है, पर कोई आने वाला है।
5: अच्छा,
6: अपना ही रिलेटिव मतलब हमारे चाचा का लड़के लोग आसाम से आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपना घर।
5: अच्छा अच्छा,
6: आसाम में भी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक पुराना मेरा घर है।
5: अच्छा।
6: पूरा मतलब हवेली के जैसा बड़ा सा घर है और उसमें से हट के हम लोग अलग बनाए हैं। ये अलग घर जो हट के बनाए हैं उसमें हम पेंटिंग करा रहे हैं।
5: अच्छा अच्छा।
6: तो आसाम से आने वाले हैं लोग, तो कुछ तो लड़के बच्चे जो है पेंसिल से जो दीवारों पे जो है ना
5: पढ़ लिए हैं।
6: हाँ, वो पढ़ लिए हैं। तो उसे मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, तो कहे कि थोड़ा थोड़ा हो ही जाए ये कोट पेंट।
5: बिल्कुल।
6: तो वही पेंटिंग करा रहे हैं, उसी में लगे हैं। जब तक आपका याद आ गया, आपका याद आ गया तो कभी से उंगली करीब 2 मिनट किए हैं, है ना, नींद जा रहा था, तो जब तक से आपका लग ही गया।
5: चलिए बढ़िया है।
6: तो 3 बीट के बाद आज मतलब 3 बार हम कॉल नहीं कर चुके।
5: अच्छा।
6: आज ये सही है क्योंकि 3 बार में इधर उधर कोई काम से है ना लग गए थे, तो आज याद आया तो हमने कहा चलो आज फरमाइश करते हैं। तो कोई गाना सुनाइए मैडम, आप नहीं मन से
5: हिंदी में?
6: हाँ तो उर्दू में।
5: उर्दू में भी गाना होता है ना?
6: होता ही है। सुनाई तो सुनाइए ना।
5: अब मतलब सुने नहीं है, मैं तो ऐसे सुनी, अब मुझे नहीं पता है कि उर्दू में गाना है।
6: उर्दू में होता है वो पाकिस्तान वाले लोग बजाते हैं। यही है,
5: मैडम
6: आज सुना दीजिए अपने मतलब से। कोई
5: अपने मतलब से? चलिए ठीक है, तो प्ले कर रहे हैं।
6: ओके
5: ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: अरे तो हमें परेशान कर दिए महाराज, फोन धराते धराते पूरे परेशान हो गए।
2: सर क्या अब आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी?
1: हाँ, आई सो कॉल धराए। और सब बताइए?
2: सब बढ़िया है। तो उंगली दुख गया होगा आपका?
1: हाँ, उंगली नहीं दुखेगा, कैसे हम लोग उसी से काम है सबसे ज्यादा उंगली से।
2: हाँ, तो क्या हो रहा था, अभी ड्यूटी में है कि रूम पे है?
1: नहीं, छुट्टी, आज भी छुट्टी मारे हैं।
2: आज भी छुट्टी मारे हैं?
1: हाँ, ऐसे गांव से मम्मी आई है ना।
2: हाँ,
1: तो वही थोड़ा छुट्टी किया है।
2: चलिए बढ़िया है, आराम करिए। तो गाना कौन सा सुनना है?
1: बबीता सागर के कोई सा गाना सुनाइएगा।
2: बबीता सागर का?
1: हाँ।
2: अब जीजा साले आप लोग बबीता सागर के एकदम फैन है लगता है।
1: और शुरू में किए तो वो बता रहा था कि रिचार्ज ही नहीं है।
2: रिचार्ज नहीं था, थोड़ा लेट चेक किए तो तुरंत रिचार्ज हो गया। तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, उन्हीं को, जीजू का सुनाना है। वो अभी बबीता सागर का, हमारा भी बबीता सागर का है।
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं।
1: और बारे जीजू का सुनाना है।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ
2: चलिए ठीक है, तो गाना प्ले कर रहे हैं आपके।
1: ठीक है
2: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जिम में।
0: सलाम।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अशफाक अलम बरारी हरके।
1: जी, क्या हाल चाल है अशफाक जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: मैम अगला सोमवार को हम बताए थे इक्कीस तारीख लाल, तो हम नहीं सुन पाए।
1: तो वो तो सोमवार को ही चल गया है और मंगलवार को।
0: अच्छा मैम, जी जी
1: जी। तो आज कॉल किया, आज की आने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैम आपका मन से
1: नहीं, आप इतना मेहनत करके कॉल किए तो आप अपना मन बताइए। बाकी अभी जो गाना सुन रहे हैं आप मेरे ही मन से सुन रहे हैं।
0: अच्छा। मानव मारदा के गोली फिल्म देवा साथे होली,
1: तभी होली का गाना सुनना है।
0: जी जी।
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: जी मैम। मैम कब तक ऑनलाइन रहती हैं आप?
1: ऑनलाइन अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव मैं 12 बजे से आती हूँ 4 बजे तक।
0: अच्छा, लाइव में मैंने लाइव नहीं समझे,
1: जो अभी बोले ना ऑनलाइन।
0: जी जी
1: जी। तो ऑनलाइन में 12 बजे से आऊंगी।
0: अच्छा, 12 बजे से 4 बजे फोन लगाएंगे लग जाएगा?
1: हाँ हाँ, 12 से 4 के बीच में आप लगाइएगा तो आपका गाना तुरंत आप सुन लीजिएगा।
0: अच्छा, उस बेर सुन लेंगे तुरंत।
1: जी जी। और अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये शाम को 5 से 7 के बीच में सुनिएगा।
0: अच्छा, ये गाना अभी बताएं तो?
1: हाँ, अभी अभी ये जो भेजे हैं ये 5 से 7 के बीच में चलेगा।
0: 5 से 7 बजे ले?
1: हाँ
0: ठीक है मैम।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: जी एगो रिक्वेस्ट बा
1: बोली
0: भर होले देवर साथे रह जाले कि 11 महीना मरद साथे रह मरद के मत छोड़ा
1: ओके
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से
3: Now pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
5: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
6: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
5: भागे भागे फिरते हैं।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: नमस्ते मैम।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: थैंक यू मैम। अनिल बात कर रहे हैं छोटे
9: जी, जी। कैसे हैं अनिल जी?
8: बस बढ़िया, अपना बताइए।
9: हमारा बढ़िया है सब कुछ।
8: चलिए अच्छी बात है।
9: तो क्या हो रहा है अभी? ड्यूटी में ही है?
8: हाँ ड्यूटी में ही है, लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी जैसा फील हो रहा है।
9: काहे?
8: क्योंकि डॉक्टर साहब छुट्टी थे, लेकिन
9: अच्छा।
8: मेडिकल तो खुला ही खुला रहेगा ना?
9: हाँ वो तो खुला ही रहेगा।
8: बाकी लोग ड्रेसिंग के लिए या फिर कोई किसी का फ्रैक्चर है या फिर जो पेशेंट भर्ती है उसके लिए तो रहना पड़ेगा।
9: मतलब खुला तो रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है।
8: जी जी,
9: रोज रोज काम करके भी आदमी बोर हो जाता है।
8: हाँ वो तो बहुत मतलब रेयर कभी इस तरह का सिचुएशन बनता है, तो रेगुलर काम करना ही पड़ता है।
9: बता दीजिए गाने का नाम।
8: गाना सुना दीजिएगा
9: जी।
8: सिंगर है ना, नया नया सिंगर है, वो साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, वही गाना सुना दीजिएगा
9: जी। और सुनवाना भी है, डेडिकेट भी करिएगा।
8: डेडिकेट सारे लिसनर्स को
9: जी
8: जी।
9: चलिए तो प्ले करे गाना
8: जी मैम।
9: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सुरेश, में फोन लगा है ना?
1: जी जी बिल्कुल लगा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ वही तो सुनते हैं, हमको गाना सुनना है।
1: जी सुनवा देंगे। आपके बगल में पहले रेडियो चल रही है, उसे उसकी आवाज़ कम कर दीजिए।
0: वो लोहा फिल्म का सुना दीजिए।
1: लोहा फिल्म से कौन सा गाना?
0: लोहा फिल्म 16 बरस वाली,
1: मेरी उम्र को सलामो वाला।
0: हाँ,
1: और आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: संजय का ग्राम होली डुमर और इलाहाबाद का बिहार से बोल रहे हैं।
1: जी तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक कर दीजिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टेलीविजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम। अनिल बात कर रहे हैं छोटे
2: जी। जी, कैसे हैं अनिल जी?
1: बस बढ़िया, अपना बताइए।
2: हमारा बढ़िया है सब कुछ।
1: चलिए अच्छी बात है।
2: तो क्या हो रहा है अभी? ड्यूटी में ही है?
1: हाँ, ड्यूटी में ही है, लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी जैसा फील हो रहा है।
2: काहे?
1: क्योंकि डॉक्टर साहब छुट्टी पे, लेकिन अच्छा। मेडिकल तो खुला रहेगा ना?
2: हाँ, वो तो खुला ही रहेगा।
1: बाकी लोग ड्रेसिंग के लिए या फिर कोई किसी का फ्रैक्चर है या फिर जो पेशेंट भर्ती है उसके लिए तो रहना पड़ेगा।
2: मतलब खुला तो रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है।
1: जी जी,
2: रोज रोज काम करके भी आदमी बोर हो जाता है।
1: हाँ, वो तो बहुत मतलब रेयर कभी इस तरह का सिचुएशन बनता है, नहीं तो रेगुलर काम करना ही पड़ता।
2: बता दीजिए गाने का नाम।
1: गाना सुना दीजिएगा। सिंगर है ना, नया नया सिंगर है, वो साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, वही वाला सुना दीजिएगा
2: जी। और सुनवाना भी है, डेडिकेट भी करिएगा।
1: डेडिकेट सारे लिसनर्स को।
2: जी
1: जी,
2: चलिए तो प्ले करे गाना।
1: जी मैम
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सी, आपने फोन लगा है ना?
1: जी जी बिल्कुल लगा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ वही तो सुनते हैं, हमको गाना सुनना है।
1: जी सुनवा देंगे। आपके बगल में पहले रेडियो चल रही है, उसे उसकी आवाज कम कर दीजिए।
0: वो लोहा फिल्म का सुना दीजिए।
1: लोहा फिल्म से कौन सा गाना?
0: लोहा फिल्म 16 बरस वाली,
1: मेरी उम्र को सलाम वाला।
0: हाँ,
1: और आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: संजय का, ग्राम होली डुमर और इलाहाबाद का, बिहार से बोल रहे हैं।
1: जी तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक कर दीजिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल।
0: धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: कैसी हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ जी, मेरा तो खाना हो गया है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: ये इसके बराबर दर्द दी है, रात दिन सताए
1: जी। और सुनवाना भी है
0: आपको? सभी को रेडियो रिमझिम सुनने वाले
1: जी। और नाम भी बता दीजिए।
0: नाम सेल्फी भिटेरवा से
1: जी। और सब बताइए अभी क्या हो रहा था?
0: अभी तो सारा काम करके आराम करने बैठी थी, सोची कॉल लगा लूं।
1: जी बिल्कुल बढ़िया सोची, तो प्ले करें गाना
0: जी। जी थैंक यू,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस में कॉल की।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: रंकेश, गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं रंकेश जी?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: जी, गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: तो नदिया का पार का गाना नहीं है जो पूरे नाव से साथ
1: वही, और सुनवाना भी है।
0: हेलो।
1: हाँ, गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
0: हाँ, जितना सब लोग।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
3: मैं नीता शुक्लवा से।
2: कैसी है नीता जी?
3: हम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ।
3: तो नाश्ता हो गया?
2: जी हाँ बिल्कुल हो गया है।
3: जी गाना सुना दीजिए।
2: जी सुनवा देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
3: गाना मैं अगर मैं सही करूँ तो की गलत बात है।
2: एक बार और बताइए नाम।
3: अगर मैं सही करूँ तो की गलत बात है।
2: अगर मैं सही करूँ तो भी गलत बात है। किसके आवाज में है ये गाना?
3: तो मालूम नहीं।
2: अच्छा, ये गाना आप सुनी है कि रील में सुनी है?
3: क्या
2: ये गाना पूरा सुनी हुई है कि रील में सुनी है आप गाना?
3: नहीं पूरा सुन, मूवी का गाना है।
2: मूवी में? हाँ हाँ। अरुण धवन वाला?
3: हाँ।
2: ओके ओके ठीक है, समझ गया। और गाना डेडिकेट भी है
3: आपको? जितने
2: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना
3: जी। थैंक यू,
2: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं मनीष प्रसाद बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोलता
0: जी। कैसे हैं मनीष जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: अभी बढ़िया है। अभी क्या हो रहा था?
1: अभी तो काम कर रहे हैं।
0: अभी आप लोगों से बातें कर रहे हैं
1: जी। मौसम क्या हाल है?
0: मौसम तो कड़ाके वाली धूप हुई है।
1: गेहूँ कट गया कि नहीं?
0: काफी हद तक कट गया है, एक आधू का बाकी है किसी किसी का, बाकी सब तो निकल ही गया।
1: चलिए ठीक है।
0: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: गाना दिलवाले की तरह का कोई भी सुना दीजिएगा।
0: दिलवाले से कोई भी?
1: हाँ जी।
0: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और रेडियो रेंजर सुनने वाले सभी श्रोताओं।
0: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: जरा खेती में जान देवे के ओके उदेव हमारा नहीं खे देवे के अनु
1: ये हमार ना सुनी जा जा के तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना ये बैल हो बैली ना सुन।

0: हाँ तो करा लोग किसानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: छोड़ के चरणवा के बाप तोरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा
1: संग हुई गवा लगनवा।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: जी आप सिंगर हैं कुमार सानू,
1: 27,000 महाराज जी अभी तक गाने गा चुके हैं, 27,000 90 के दशक से महाराज जी गा रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड है राष्ट्रपति
2: अमेरिका से सीधे आया इधर आपको दर्शन करने,
3: आपको देख लिया बस हो गया
2: आपका आशीर्वाद लेने आया,
3: बस आप आशीर्वाद कीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक से और कर पाए।
4: देखो पूर्व में कोई बहुत बड़ा तप किया आपने जो लोकप्रिय हुए, लोकप्रिय होना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, जनमानस पर आपने अपना अधिकार बनाया, हमारे भारतीय और अन्य भी जो संगीत प्रियजन है उनके कर्ण प्रिय वचनों वो आपकी वाणी में है, ये पूर्व जन्म

0: कि पुण्य का प्रताप है। अब ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाइएगा, समझ रहे ना, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य, ऐसा लोकोपकार कीजिएगा जिससे अगली बार फिर आप भारत में जन्मे और फिर आपका यश हो। इससे नीचे क्वालिटी में अब जीना ठीक नहीं है। अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो अब ठीक नहीं है। अब अगर हम जन्मे तो मनुष्य रूप में ही जन्मे और समाज सेवा करें, संसार को सुख प्रदान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा मिलकर आपसे।
1: एक गाना मेरा बहुत दिल के करीब है जिसमें ये हम सबके लिए गा सकते हैं, भगवान के लिए, माता पिता, भाई बहन, अपना पत्नी, सबके लिए।

0: प्रार्थना देती है कि हमारी जो श्वासें हैं बहुत कीमती हैं। जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम श्वास हो, आप पूरी लगा दें कि मैं 50 वर्ष की पूरी संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैसे आपको शिव प्रेम की प्राप्ति की चाह है तो शाम सदाशिव शिव शिव शिव, उठते बैठते चलते फिरते उनका नाम स्मरण करते रहिए। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है और नाम स्मरण से भगवान की निश्चित प्राप्ति होती है। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को ही नष्ट कर देता है वो भगवान है, इसलिए नाम स्मरण कीजिएगा।
1: गौरव शर्मा जी यमुनानगर से।
2: राधे राधे।
1: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा से इस भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी आपके एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि साधक को ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में से एक पर चलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी मैं भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं, तो मुझे वेदांत और अद्वैत के सिद्धांत को धारण करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें या क्या करना चाहिए महाराज जी प्रभु का, प्रभु भगवान शिव।
0: देखो जब अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूं इस बात की सिद्धि की जाती है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, मैं वही। तो फिर आत्म प्रेम होगा ऐसे मान के कि भगवान शिव मैं उनका प्रेमी दास, ये भक्ति से पूर्ण होगा। इसमें भक्ति प्रधान भाव रहेगा क्योंकि भक्ति में भेद से अभेद है और अभेद में ही स्थित ज्ञान है। तो प्रारंभ में यदि हम अभेद भाव लेते हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है वो अभेद दर्शन है, मैं भूल से अपने को देहाभिमानी जीव मान रहा था, ये मेरा भ्रम है, न मैं स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न प्राण हूँ, मैं शिव हम, मैं शिव, उसी के चिंतन में तन्मय। तो एक मार्ग भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के द्वारा अभेद स्थिति का, एकत्व स्थिति का वर्णन किया। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर भक्ति सिद्धांत से चले, भगवान शिव हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, तो स्वामी और सेवक भाव की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान से। भक्त को ज्ञान रहता है पर वो गौड़ मुख्य रहता है भाव, तो प्रेम तो एक में होता नहीं, प्रेम दो में होता है और प्रेम दो रहने देता नहीं, इसलिए अभेद हो जाता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, बड़ा अद्भुत बात है कि एक में प्रेम होता नहीं, दो में होता है, और जब प्रेम हो जाता है तो दो रहने देता नहीं, एक कर देता है। प्रेम का स्वभाव है वो एक कर देता है, तो प्रेम से एक हो जाता है, वो शिवमय हो गया, मन शिवमय, बुद्धि शिवमय, अहम शिवमय, चित्त शिवमय, वो शिवमय हो गया प्रेम में, और ज्ञान में मैं स्वयं शिव हूं। तो शिवोहम और दासोहम, दासोहम भक्ति की सिद्धि है और शिवोहम वेदांत दर्शन की सिद्धि है। तो देखना पड़ेगा, प्रेम चाहते हो शिव प्रेम तो फिर भक्ति सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा।
2: आत्मबोध और के बाद प्रेम नहीं आ सकता महाराज?
0: नहीं,
2: एक ही होगा।
0: किससे करूं प्रेम जब दूसरा कोई है नहीं, तो किससे करूं? दूसरा कोई है नहीं तो प्रेम किससे करूं?
2: महाराज ये यम नियम ये हमें प्रेम के लिए भी धारण करनी चाहिए, यम नियम या ध्यान दान इनका यम
0: नहीं। प्रेम में इनका विशेष महत्व तो नहीं है, प्रेम में सुमिरन का विशेष महत्व तो है। जैसे हम पवित्र आचरण, अधर्माचरण का तो त्याग है, ये तो यम नियम अपने आप आ जाते हैं, अधर्माचरण का त्याग तो है ही है। तो जैसे झूठ ना बोलना, सत्य आस्ते, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी से दान

0: ना लेना और ब्रह्मचर्य से रहना, ये तो सब अपने आप आ जाता है। भगवान का नाम जप करना, उनकी आरती पूजा करना, उनका पाठ सुनाना, उनकी लीला कथा सुनना, उनकी लीला कथा कहना, उनके भक्तों का संग करना, ये भक्ति से, भक्ति सिद्धांत से चला जाता है, तब प्रेम प्रकट होता है।
1: योग वशिष्ठ अध्याय,
0: हाँ, योग वशिष्ठ का अध्ययन वेदांत दर्शन को पुष्ट करता है, अभेद भाव को पुष्ट करता है उसमें। हाँ अलग अलग है ना।
1: आपकी क्या करना चाहिए?
2: भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए?
0: भगवान शिव का नाम जप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सेवा में विराजमान कीजिए, उनकी दास्ता कीजिए, आरती पूजा भोग लगाना, प्रणाम दंडवत परिक्रमा करना उनकी, ऐसे भक्ति भाव से चलिए तो ज्ञान भी हो जाएगा। देखो एक बार हनुमान जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि तुम हनुमान कौन हो? तो उनका देह भाव से मैं दास हूं राम जी का, और अंश हूं भगवान का, इसलिए भगवान अंशी है, मैं उनका अंश हूं, जीव हूं, और तत्व स्वरूप से मैं वही हूं। तो सिंहासन में राम जी विराजमान है, तत्व स्वरूप से वह हूं। तो ज्ञान भक्त को हो जाता है, ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी और भक्तराज है, है नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, और भक्त भी है। तो भक्ति से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उसमें प्रेम होता है भक्ति में। और जो वेदांत दर्शन से है वो द्वैत का खंडन करता है, वो शुरुआत से ही अद्वैत स्थिति उसमें आती है। तो इसमें करुणा और मैत्री ये सब नहीं रहता, इसमें हम चूंकि चले हैं ना, इसमें हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हृदय हो जाता है, ये सब बातें नहीं, कोई है ही नहीं, किस पर दया, किस पर प्रेम, किस पर करुणा, कोई है ही नहीं ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं, मैं स्वयं वही ब्रह्म हूँ, अब किससे प्रेम करे, किससे करुणा करे। तो
1: आचार्य अवहेलना तो नहीं होगी महाराज जी?
0: नहीं, तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी गंगा स्तोत्र, यमुना स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री कृष्ण स्तोत्र गान किए कि नहीं? तो उसमें देखो ना कैसे दैन्य भाव से गान किए, तो ऐसे दैन्य भाव से शिव भक्ति करते हो आचार्य भगवान शंकराचार्य जी।